0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm Radio
1: Olive, number one. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

बेहतर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: तुरंत आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। तो जी हाँ, कतर के वो दो धुरंधर पहुंच चुके हैं यहाँ पे हॉट सीट में।
1: यस।
0: तो कहाँ थे कल? आप पूरी जनता पूछ रही थी कशिश कहाँ गई, कहाँ गई?
1: जनता नहीं पूछ रही थी, मुझे सब पता है, कोई मुझे याद नहीं करता।
0: नहीं नहीं, एक्चुअली आपको याद कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि आज बलि का बकरा नहीं आया, क्या हो गया करके।
1: बलि का बकरा ठीक है ना, मैं बस उम्र का लिहाज करके अच्छा, इस इंसान को कुछ बोलती नहीं हूँ, वरना आप लोग बस मुझे एक बार बोलो तो कि क्या उम्र, कोई बात नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर, मैं फिर बताती हूँ बकरा कौन है।
0: देखते देखते
1: कुछ नहीं यार, तबीयत थोड़ी सी नासाज थी।
0: लेकिन क्या थी?
1: नासाज।
0: अच्छा ओके,
1: क्यों
0: बोलो बोलो, मैं एकदम से चकित हो गया।
1: अरे मेरे अंदर का वो भोपाली नवाब जो है वो बाहर आ जाता है बार बार। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, थोड़ा सा ऐसे लो लग रहा था।
0: अच्छा।
1: लेकिन कोई बात नहीं।
0: अच्छा।
1: अब थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है और बाकी जो तबीयत थोड़ी सी बची हुई है, ठीक नहीं हुई है, वो मुझे लगता है कि सबसे बात करके और ठीक हो जाएगी।
0: बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी। और आपकी तबीयत ठीक करने के लिए मैं जनता से ये दरख्वास्त करूंगा कि तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजिए, कोड्स भेजिए, बताइए आज का प्लान क्या है, क्योंकि इरादे इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। और यहाँ भी देखिए, हम तो अपना इरादा बनाकर आए हैं कि आपके मॉर्निंग को सिर्फ गुड़नाएं बिंदास बनाएंगे। और देखिए आज काफी क्यूटनेस है माहौल में, एक क्यूटेश सी हवा, नहीं वो नहीं है, क्यूटेश सी हवा है। मैं सच बोलता हूँ भाई। एक क्यूटेश हवा बह रही है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप सबको कुछ क्यूट क्यूट गाने सुनाए जाए। मगर शो की शुरुआत इससे भी ज्यादा क्यूट नोट पे होने वाली है भाई।

0: ऐसी सौदेबाजी हो तो मैं थी यार। भाई बहुत ही प्यारा गाना, मगर मूवी का नाम काफी आक्रोश, मतलब क्या बताऊं, काफी इंटेंस नाम मूवी का और मूवी भी काफी इंटेंस, मगर गाना बहुत क्यूट। ऐसा क्यूट गाना सुनते हुए आज के क्यूट दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और कहते रहिए
1: जियो बिंदास।

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: मनमर्जिया मूवी का गाना हमने सुना हर्षदीप कौर और जासिम की आवाज में। यार आज इतना क्यूटनेस है ना हवा में, इतना क्यूटनेस है कि मैं क्या बताऊं। आज देखिए मंडे है, इंडिया में वर्क वीक स्टार्ट हो चुका है, वहां पे मंडे ब्लूज चल रहे हैं, यहाँ पे मंडे क्यूटनेस चल रहा है। और क्यूटनेस की बात की और मैं इस बारे में बताऊंगा नहीं तो फिर बात कैसी कंप्लीट हो सकती है ना। कशिश सोच रहे उसके बारे में बात कर
1: मेरे बारे में ही कर रहे हो, ठीक है?
0: बिल्कुल सही कहा।
1: यस आई नो।
0: यस तो चलिए आपका फिर से एक और बार स्वागत है, ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे आए हैं हमारे पास बहुत ही क्यूट क्यूट मैसेजेस, जैसे की ऋषि का मैसेज आया है। ऋषि ने बोला है गुड मॉर्निंग जियो बिंदास, और एक कोट भी भेजा उन्होंने, लिखा योर माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल हीलर ऑफ योर बॉडी, बी पॉजिटिव बी हैप्पी करके। थैंक यू सो मच जी, सही बात कही आपने, जो हमारी सोच है वही हमारी रियलिटी है। और बड़ी बात कर दी ना एकदम से,
1: बहुत बड़ी बात
0: भाई, आज ब्लेजर पहन के आया हूं ऐसे थोड़ा ना
1: कोट पहन के आया है, कोट पहन के बात कर रहे हैं आज।
0: कोट को, ओ वाह,
1: बड़े दिनों के बाद
0: कोट में। यस और जुल्फी भाई का मैसेज आया, लिखा है डू थिंग्स फॉर पीपल नॉट बिकॉज ऑफ हु दे आर और व्हाट दे डू इन रिटर्न बट बिकॉज ऑफ हु यू आर, गुड मॉर्निंग करके। ये भी बिल्कुल बढ़िया बात, सही बात कही आपने, चौका लगा दिया अपनी बात से, थैंक यू सो मच जी। और शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है, लिखा है कि हेल्प व्हेन यू कैन, बी देयर व्हेन यू कैन, एनकरेज व्हेन यू कैन, अ ट्रूली हैप्पी लाइफ कम्स फ्रॉम गिविंग मोर देन यू टेक, गुड मॉर्निंग करके। बिल्कुल सही बात है, देना ज्यादा होता है भाई। कभी कभी लाइफ में हम ये सोचते हैं कि यार हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, तो हमें ये सोचना चाहिए कि यार मैं क्या दे पा रहा हूँ लोगों को, क्या मैं किसी को खुशी दे पा रहा हूँ, मुस्कुराहट दे पा रहा हूँ।
1: बचपन में भी कहते थे ना कि देने वाला हाथ जो है वो होना चाहिए आपका, ऐसे नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ होना चाहिए, तो अपने आप आपको ऊपर वाला देता है फिर।
0: बिल्कुल बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। यहाँ पे काफी डीप लाइफ लेसंस के बारे में जो है आज चर्चा हो रही है,
1: काफी छोटी उम्र में काफी बड़ी बातें कर रहे हैं
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल। और नाजनी जी का मैसेज आया है A beautiful day is waiting for you. Good morning करके। Thank you so much जी, thank you so much। और वैसे ही हम ये भी बताना चाहते हैं, सुबह आते वक्त मैंने एक बहुत ही प्यारा सा एक वो पढ़ा था, उसमें यही बोला गया था कि यार देखो लोग बहुत anxious होते हैं आजकल, बहुत ज्यादा चीजों को एंटिसिपेट करते हैं कि यार ये ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये करूंगा तो वो जाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, वो नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, फलाना ढिमकाना, रोजमर्रा की चीजें, दुनिया भर की चीजें हमें तंग करती रहती हैं। और उस आर्टिकल में यही बोला था कि यार वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्कआउट करते हो, ठीक है, तो कितने दिन में मेरे बॉडी में फैट निकलना चाहिए, बॉडी से फैट निकलना चाहिए, वो आप कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, आप सिर्फ एक्सरसाइज करना कंट्रोल कर सकते हो, किस इंटेंसिटी में एक्सरसाइज करना कंट्रोल कर सकते हो।
1: एग्जैक्टली।
0: तो सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ का जो एक एक मार्ग है वो यही है कि जो हम कर सकते हैं
1: वही
0: उसी पे करो, फोकस करो, एनर्जी उस पे डालो, जो होना है वो होगा, जो नहीं होगा तो बेहतर ही आपके साथ होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जीवन को जीवन के जैसे जिए और चेस का गेम ना बनाए उसे, कि चार चाल बाद का सोच रहे हैं कि यार अब क्या होगा, कि किस तरीके से किसकी गोटी कैसे काटेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, किसके घोड़े को काटेंगे अब हम, ऐसे कुछ नहीं सोचना होता हमें। अभी फिलहाल हम यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जिंदगी जो है एक जर्नी है।
1: yes.
0: हर स्टेप में हम नई चीज सीखते हैं, नए सिचुएशन से गुजरते हैं, तो अपने आप को हर स्टेप में इवॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
1: right.
0: चेस की तरह किसी को काटना नहीं होता। सांप सीढ़ी का गेम है भाई ये। यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास
2: रेडियो ऑलिव पर, आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Geo Bindas.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर ये एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: ओए लकी लकी ओए, मूवी का गाना सुना हमने, काफी प्यारा गाना है ये और मूवी भी काफी एक अलग काइंड ऑफ मूवी थी, थोड़ी ऑफ बीट मूवी थी। और मुझे लगता है अभय देओल जब भी किसी मूवी में आते हैं ना, अपने आप एक ऑफ बीटनेस जो है उस मूवी के साथ अटैच हो जाता है। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे भाई एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सवाल हम लेकर आए हैं। सवाल काफी सरल है, हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्रिकेट का टॉपिक जो है कवर करेंगे, क्रिकेटिंग टर्म के बारे में पूछेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्रिकेट में हैट्रिक करके एक टर्म यूज होता है, हैट्रिक का मतलब क्या है ये आपको बताना है। हैट्रिक का मतलब क्या है ये आपको बताना है। एक बॉलर को हैट्रिक मिला या फिर हैट्रिक ऑफ सिक्सेस या फिर डबल हैट्रिक, हैट्रिक का मतलब क्या है, ये सारी टर्म्स हमने सुने, तो हैट्रिक का मतलब क्या है ये आपको बताना है। अब तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले हमें मैसेज कीजिए 3311063 पर, बताइए इस सवाल का जवाब
1: जल्दी बता दीजिए। मैं ज्यादा देर अपने मुंह पे हाथ नहीं रख पाऊंगी,
0: अरे
1: मेरे को बताना है अब, क्योंकि
0: आज,
1: क्योंकि
0: आज,
1: कुछ चीजें हैं जो मुझे पता है। 10वीं 11वीं 12वीं से आप स्मार्ट होना हो इस वाले क्वेश्चन में, मैं जरूर स्मार्ट हूं।
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। देखिए कशिश के साथ कॉम्पिटिशन, आप बताइए कि आप कितने तेज हो। जल्दी जल्दी जल्दी मुझे इस सवाल का जवाब भेज दीजिए 3311063 पर। और यहाँ पे सुनिधि चौहान की आवाज में प्यार की ये कहानी सुनो।
2: प्यार की ये कहानी सुनो
0: ध्यान से।
2: एक लड़का था एक लड़की,
0: अच्छा
2: जी क्या है जवानी सुनो।
0: स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो 106.3 एफएम
1: जी अविनाश।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे स्टेशन क्लॉक में 6:50 हो रहे हैं और हमने पूछा था एक सवाल कि हैट्रिक का मतलब क्या है, बताइए हमें तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले, अभी के अभी। तो हमारे पास जो है मैसेजेस आए हैं, धीरे धीरे जो हमें मैसेजेस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले भाई हमें मैसेज भेजा है सादिक खान ने, उन्होंने लिखा है कि एक मिनट, हाँ उन्होंने लिखा है 3 wickets with 3 consecutive deliveries in a single match, ये है हैट्रिक का मतलब। उसके साथ साथ जो है मुझे एक और मैसेज आया था अमित जी के अकाउंट से, एक मैसेज आया है, उन्होंने एक ऑडियो भेजा, उस ऑडियो को जो है हमने डाउनलोड किया है, जैसे वो ऑडियो डाउनलोड हो जाएगा मैं आपके लिए प्ले कर दूंगा। और यहाँ पे इदरीस भाई ने भी जो है हमारे लिए मैसेज भेजा है, इन्होंने फोटो भेजा आज वैसे, और आंसर भी किया है कंटिन्यूसली 3 wickets for 3 balls जो है हैट्रिक होता है करके, एंड टुडेज पिक्चर फॉर यू करके उन्होंने बहुत ही प्यारा सा एक पिक्चर भी भेजा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला अमित जी के अकाउंट से मैसेज आया था, वो हम प्ले करना चाहेंगे, तो चलिए वो जरा सुनते हैं क्या आंसर आया है।
2: Morning Radio Olive, my name is Durvang and I'm 8 years old and your answer for today is if something happens 3 times in cricket without any breaks, that's a hat trick. It's an example that a bowler gets a 6 in the first time and then the second time and the third time.
0: वाओ दुर्वांग भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। एंड उसके साथ साथ जिन लोगों ने मैसेज किया है हैट्रिक के बारे में, बिल्कुल सही जवाब दिया है सबने, इसलिए सबके लिए बजेंगी तालियां। कशिश बेचारी यहाँ पे सोच रही है कि एक ही चीज आती थी मुझे,
1: एक आंसर आता था मुझे, इतने मतलब मुझे एक महीने से, मैं ये वाला हम सेगमेंट साथ में कर रहे हैं एंड हाँ। मुझे एक भी जो है अच्छे से नहीं आता था आंसर, मतलब यूएसबी का भी मुझे आधा पता था,
0: हाँ, बस है, पता था बस तो मैंने ये बोला बस अब मत बोलना,
1: पर मुझे आज का आंसर पता था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्सप्लेन किस तरीके से करना है। और अगर सुदेव ने कह दिया कि आज सबसे पहले जो आंसर है वो कशिश बताएगी क्योंकि मुझे पता है, तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगी, पर आप लोगों ने क्या तो एक्सप्लेन किया है
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आप एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के साथ, और मैं बहुत खुश हो गया कि सबको पता है।
1: देखिए ये क्रिकेट के बारे में देखो पता होना चाहिए,
0: बिल्कुल पता होना चाहिए।
1: अब हम
0: और
1: दोस्त हैं।
0: बढ़िया तरीके से आप लोगों ने मैसेज किया, इसी खुशी में हम आपके लिए फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। और थोड़ी देर में जब हम वापस आएंगे तो हम प्ले करेंगे कुछ गाने जो आपके लिए स्पेशली हमने यहाँ पे लाइन अप कर रखे हैं, और ये गाना सुन के तो भाई सब नाचने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि ऐसा गाना आने वाला है कुछ ही देर में। अरे अरे अरे अरे, मगर मैं तो कहता हूँ भाई शुगर मनाओ,
3: तरंग में रंग जाना, मैं मन दे संग जाना, शुक्र मना।
0: धीरे धीरे जो है क्यूटनेस से एंजॉयमेंट की ओर आज का दिन जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्यूटनेस का एक और गाना जो है अभी थोड़ी देर में प्ले होगा, शुक्र मनावा, मगर अभी यहाँ पे आपके लिए वेट कर रहा है फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर। यही गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं कोक स्टूडियो भारत से आदित्य रिखारी की कॉम्पोजिशन और आवाज में। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
1: जियो बिंदास।
4: रेडियो ऑलिव पर
5: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है,
4: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: 56.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: अंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाज में सुना हमने पान की दुकान फ्रॉम द मूवी ओ रोमियो। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और भाई यहां पे जो है, चलिए मौसम का हाल देख लेते हैं। अब देखिए कशिश आई गई है तो मौसम तो सुहाना हो ही जाएगा।
1: ऑब्वियसली मौसम
0: है मौसम बड़ा क्यों नहीं हुआ
1: कैसी कैसी बातें कर देते हो यार। देखिए मैं तो जाना चाहती हूँ, वहाँ का माहौल बढ़िया हो जाता है, लेकिन मौसम का देखिए मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज मौसम में गर्माहट बढ़ रही है।
0: धीरे धीरे
1: करके गर्माहट बढ़ रही है। बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे पे जलता हुआ मोमो डाल दिया है।
0: आप खा लेते हो फिर उसे चटनी में डुबा? नहीं खाते?
1: अरे लगता है यार,
0: लगता है। अच्छा सॉरी, मुझे लगा सही में किसी ने ऊपर से ऐसी टोकरी पटक।
1: नहीं, कल जो है मैं हेल्थ सेंटर से अपने घर जो है जब जा रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर ऐसे कैब आने तक थोड़ा बाहर खड़े हो जाती हूँ, धूप में विटामिन डी मिल जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कितने बजे थे वो? कितने बजे?
1: 9 बजे।
0: 9 बजे, ठीक है ठीक है
1: ठीक है। पर इतनी गर्मी थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि मैं जो है जब तक मेरी कैब आई 1 मिनट में, तब तक जो है मैं पूरी तरीके से पसीने में भीग चुकी थी। एंड ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा 1 घंटे का कार्डियो वर्कआउट करके जो है बाहर निकली हूँ जिम से।
0: वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: पूरा जितना बुखार मुझे चढ़ा हुआ था सब उतर गया।
0: वही है इस गर्मी का कमाल कि जो भी कुछ दिक्कत हो जाती है वो भाप बन के बह जाती है।
1: yes.
0: मतलब उड़ जाती है। और यहाँ पे देखिए अभी का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस जो है दिखाया जा रहा है, और आज का लोएस्ट टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस, और हवा जो है 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है। और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी?
1: किसी भी हवा में इतना दम नहीं कि वो सुदेव को उड़ा के ले जाए।
0: आप मुझे वेट शेम करने की कोशिश कर रहे हो ना?
1: नहीं, मैं आप में वजन है, आप में बढ़िया।
0: हाँ वही ना बोला, वेट शेम करने की कोशिश कर रहा हूं।
1: अरे यार, एक तो ये इंसान मेरी हर चीज को गलत तरीके से जो है क्या बोलते हैं उसको, डीकोड कर लेते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है इस गर्मी के मौसम में हाइड्रेटेड रहिए, पानी जो है उसका सेवन करते रहिए, और बस बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
0: और फोटोज भेजते रहिए। भाई अपने आसपास के नजारे जो है दिखाते रहिए हमें 3311106 पर। आप जरा आसमान की फोटोज खींचिए, बताइए कैसा लग रहा है आसमान आज। हम तो अभी अंदर बैठे हैं स्टूडियो के, कुछ दिख नहीं रहा है हमें, हम बस एक दूसरे के चेहरे को देख के खुश हो रहे हैं। तो अब आप थोड़ा एक चेंज ऑफ सीनरी कर दीजिए हमारे लिए।
1: मुझे कुछ तो अच्छा दिखा दीजिए,
0: मुझे भी प्लीज।
1: ओ माय गॉड, एक्सक्यूज मी,
0: मतलब मैंने अच्छा देख लिया, अब दूसरा अच्छा देखते हैं।
1: गुड,
0: ठीक है, मतलब अच्छा, मतलब मेरा रिफ्लेक्शन ही मैंने शीशे में देखा। तो या गाइस जल्दी जल्दी फोटो भेजिए और हमारा दिन जो है बढ़िया कर दीजिए। नेहा कक्कर और अमित त्रिवेदी की आवाज में चलिए बधाई दोगा गाना सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: It's back. Yes, the most awaited safari items for Qatar Riyal 10, 20, 30 is back on all safari outlets. Save big on categories like bakery, fresh food, groceries, household, electronics, cosmetics, toys, ready-made and IT, and everything else. Starting from May 4th, don't miss out. Visit your nearest safari hypermarket today and get a chance to win 30 best-tuned cars.
4: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Hi, this is A.R. Rahman.
7: A.R. Rahman.
6: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
7: Jio Bindas.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे जो है भाई हमारे पास आए हैं फोटोज, इदरीस भाई ने जो है फोटो भेजे हैं हमें और बहुत ही प्यारे फोटोज भेजे हैं, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छे
1: वॉलपेपर
0: वाली फोटोज जो है वो भेजे हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे परश जी का मैसेज भी आया है, उन्होंने भी काफी बढ़िया फोटो भेजा, चमकता हुआ सूरज, वाह भाई, मतलब देख के मजा आ गया।
1: सनग्लास पहन के
0: देखना, मगर हाँ ये इतना चमक रहा है, इसमें भी चमक रहा है सूरज। और उसके साथ साथ मुझे सामी भाई ने मैसेज किया है, उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई और कशिश, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम भाई, सब बढ़िया है, खैरियत में है। और उन्होंने भी काफी प्यारे फोटोज जो हमें भेजे हैं। और उसके साथ साथ मुझे जो है इरफान भाई का एक मैसेज आया है, एक ऑडियो नोट आया है जो डाउनलोड नहीं हो रहा है, थोड़ी देर में मैं डाउनलोड करता हूं ब्रो, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके मैसेज को जरूर सुनूंगा और रिस्पॉन्ड भी करूंगा। थैंक यू सो मच फोटोज भेजने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा आपने वक्त निकाल के हमारे लिए फोटोज क्लिक किए, उन्हें सेंड किया। अभी थोड़ी देर में जो है हम वापस आएंगे और आपके साथ बात करेंगे फिटनेस के बारे में।
1: यस,
0: तो तैयार हो जाइए, कुर्सी की पिटी जो आपने बांध रखी है उसे थोड़ा टाइट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने वाला है जबरदस्त हिट्स।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: नीरज श्रीधर और विशाल ददलानी की आवाज में बहुत ही बढ़िया क्यूट सा गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: क्यूटनेस की बात हो रही है और कशिश की आवाज ना सुनाई दे तो कैसे हो सकता है वो, है ना?
1: ये सही है, आपका पूरी बेइज्जती करने के बाद जो है एक तारीफ कर दो इंसान की।
0: भाई मेरी एक तारीफ काफी बढ़िया तारीफ होती है।
1: ओह माय गॉड,
0: मतलब अलग लेवल पे जाती है। ऐसे हिट करती है कि जैसे बस वही है।
1: अब मैं इसी तारीफ के बारे में सोचती रहूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर दिन हर पल हर सांस में आप इस तारीफ के बारे में सोचिए।
1: बिल्कुल, मुझे तो सांस ही इस वजह से आ रही है क्योंकि सुदेव मेरी तारीफ कर देते हैं। मेरे आसपास जो है ऑक्सीजन थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गया है क्योंकि सुदेव मेरी तारीफ कर देते हैं। आजकल मैं खाना बेहतर तरीके से खाती हूँ क्योंकि सुदेव मेरी तारीफ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और भी कुछ है?
1: हाँ बहुत कुछ है।
0: आप ऑफिस आते हो ताकि मैं आपकी तारीफ कर सकूं।
1: एग्जैक्टली, मेरे तो कतर में रहने का रीजन ही सुदेव हैं।
0: बिल्कुल, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ।
1: मम्मी पापा मेरे को कह रहे हैं कि काम करो वापस आ जाओ थोड़े दिन के लिए, हमें बहुत याद आ रही। मैंने बोला नहीं, सुदेव यहाँ पर है, मैं कैसे आ जाऊँ?
0: और जैसे ही इन्होंने बोला कि सुदेव वहाँ पर है, घर वाले बोले फिर वहीं रहो, मत आओ यहाँ पे।
1: यस एग्जैक्टली,
0: आंटी भी बोली कि बेटा सुदेव वहाँ पे तारीफ कर, और क्या चाहिए।
1: स्पेशली सुदेव के लिए मैसेज करती है व्हाट्सएप
0: जी। विटामिन तारीफ मिलती है हर दिन बेचारी को। विटामिन डी का तो पता नहीं। विटामिन टी हर दिन मिलता है
1: मेरे लिए। देखिए विटामिन टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला विटामिन टी है विटामिन चाय वाला टी, और दूसरा विटामिन टी है तारीफ वाला टी।
0: अरे अरे अरे वाह वाह क्या बढ़िया।
1: उसके बाद फिर जैसे जैसे वीक गुजरता है वैसे विटामिन टी यानी विटामिन ताने जो है वो भी मुझे सुदेव से मिलने लग जाते हैं। पर कोई बात नहीं, हेल्थ की बात कर लेते हैं।
0: देखिए बैलेंस करना होता है ना, हमें सब बैलेंस करना होता है क्योंकि अगर सिर्फ तारीफ देते जाऊं तो उसका ओवरडोज हो जाएगा। नहीं होना। अरे बहुत ख्याल रखते हैं हम। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस यू नो।
2: हिट है तो हिट है,
0: तो आज हम फिट है तो हिट है में बात करेंगे वॉकिंग स्पीड के बारे में।
1: अच्छा,
0: वॉकिंग स्पीड ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर कैसा है? तो कल भी हमने जो है हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी, आज भी हम उनमें से एक हेल्थ इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे विच इज वॉकिंग स्पीड। रिसर्च ये दिखाती है कि आपकी जो नेचुरल वॉकिंग स्पीड जो बिना फोर्स के आपका नॉर्मल पेस होता है, एक स्ट्रांग सिग्नल होता है आपके कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का, मसल स्ट्रेंथ का और कोऑर्डिनेशन का। फास्टर वॉकिंग पेस यूजुअली इंडिकेट करता है हार्ट और लंग्स का एफिशिएंटली काम करना, मसल्स का स्ट्रांग होना और नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना।
1: ओके।
0: और लार्ज पॉपुलेशन में स्टडीज ने यह भी शो किया है कि स्लो वॉकिंग स्पीड का लिंक जो है हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस, मोबिलिटी इश्यूज या फिर अर्ली मोर्टेलिटी से होता है। अब इसका रीजन सिंपल है, वॉकिंग एक फुल बॉडी एक्टिविटी है, इसमें हार्ट मसल्स जॉइंट्स और ब्रेन सब इन्वॉल्व होते हैं। और ये सिस्टम अगर एफिशिएंट है यानी कि बॉडी एफिशिएंट है तो ये रेस नहीं है कि आपको सबसे तेज चलना है। ठीक है, आपका कंफर्टेबल नेचुरल पेस जो है वो मैटर करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग काफी जल्दी चलते हैं, वो जानबूझ के जल्दी नहीं चलते, उनका उनका स्ट्राइड लंबा होता है,
1: वो
0: अच्छा। उनका चलने का तरीका थोड़ा ऐसा होता है, वो इसलिए है क्योंकि ओवरऑल फिटनेस लेवल जो है उनका अच्छा रहता है। अब वो हम कैसे गेन कर पाए, तो आप जरूरी नहीं है कि हमें हर दिन तेज चलना है। आप डेली बेसिस में अपना हेल्थ का ख्याल रखोगे, अच्छा डाइट लोगे, डेली मूवमेंट रखोगे, तो आपके वॉकिंग में भी वो स्पीड जो है हल्की आ जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी बहुत ऑप्टिमाइज हो जाएगी, तो आप भी चलना बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर दोगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वॉक करो, जितना आप चल सकते हो बहुत अच्छा है। दिन में अगर आप एक 45-90 मिनट्स का वॉकिंग सेशन निकाल पा रहे हो सुबह और शाम को, बहुत ज्यादा बढ़िया। देखिए मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि इतना ज्यादा हम काम में उलझ जाते हैं कि काम जो है हमारी जान ही ले लेता है। ठीक है, वापस जब हम घर में पहुंच जाते तो हमें लगता है कि नहीं यार आज और कुछ नहीं करना, बस लेटना है।
1: Exactly.
0: उसी टाइम पे आधा घंटा 20 मिनट भी अगर आप चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा।
1: बिल्कुल, हमारे ना एक हमारे कलीग है प्रशीक, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि अगर तुम एक बार अपनी वॉकिंग को ट्रैक करने लग जाओगे ना तो फिर वहाँ फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता चलने से। मतलब आपने आपको जब एक बार लत लग गई है कि आपने देख लिया कि 6000 स्टेप्स हो गए
0: तो ये और करना है
1: तो थोड़े से और है वो उतना मैं चल लेता हूँ, तो आप अपने आप मोटिवेट होते हो। और एक बार आपने ये ट्रैक करना शुरू कर दिया फिर आप अपने आप कब 10000 स्टेप पूरे करने लग जाओगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी बॉडी खुद आपको मोटिवेट करेगी कि यार बस 2000 स्टेप और है, 1000 स्टेप और है, 500 और है, और चल लेते
0: आराम से हो जाएगा। ये वो ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बात बताते हुए जो है हम आगे बढ़ते हैं, ओमकारा मूवी का गाना सुनते हैं रेखा भारद्वाज की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, ये रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: जी बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: तो भाई बहुत ही बढ़िया खबर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, दोहा में होने वाले फोर्थ जीसीसी गेम्स 2026 की तैयारियों से जुड़ी एक खबर जो है हम लेकर आए हैं। ऑफिशियल मैस्कॉट का जो है लॉन्च हो चुका है। कतर ने इवेंट के लिए जो अपना ऑफिशियल मैस्कॉट वाशिक, जो एक फाल्कन या फिर एक बाज है, उसको अनवील कर दिया है, जो यूथ एंगेजमेंट और गेम्स की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इवेंट के डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 11th मई से 22nd मई तक जो है ये टूर्नामेंट चलेगा। कतर ओलंपिक कमेटी ने कंफर्म किया है कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है
1: और इस बार की जो जीसीसी गेम्स है उनमें जो है टोटल 19 स्पोर्ट्स जो है वो शामिल होंगे, जिसमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और भी बहुत सारी चीजें जो है
0: जी,
1: वो
0: जी,
1: होने वाली है। एंड अगर मैं की स्पोर्ट्स इंक्लूजन की बात करूं तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के साथ साथ इसमें पेडल स्क्वॉश और स्नूकर जैसे पॉपुलर गेम्स जो हैं वो भी फीचर किए जाएंगे।
0: और इसके अगर पब्लिक एंगेजमेंट में जो फोकस है उसके बारे में बात करें तो बताया कि मैस्कॉट का मकसद जो है पब्लिक को इस रीजनल स्पोर्टिंग इवेंट से जोड़ना और कतर के होस्टिंग रेडीनेस को दिखाना है। तो यही बात बताते हुए काम करते हैं अपन लोग भी आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया गाना, दमदार गाना आपकी तरफ आ रहा है। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
1: जी बिंदास।

0: You got to
1: Radio Olive
2: 106.3 Radio Olive
3: Geo बिंदास।
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
4: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
6: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: मैं हूं विवेक आनंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
5: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक.

0: अले जी बात करने के लिए आ गए हम, बात बोला था करने के लिए, लो कर लो बात, लो आ गए करने के लिए बात। बताओ क्या बात करना है, बताओ कौन सी बात करनी है, बताओ जल्दी बताओ। क्रिकेट की बात करनी है, किसकी बात करनी है बताओ। ये क्या रहे हो, बात कर लो यार, क्या हो गया आपको?
1: कोलकाता जीत गई।
0: अच्छा तो कुछ क्यों हो रहे, बेंगलुरु तो हार गई थी।
1: अरे यार
0: बेंगलुरु तो हार गई, उसमें इतना क्या क्यों,
1: इसलिए हंस रहे हो। गाइस वेलकम बैक, 106.3 रेडियो वाले पर मैं हूं आपकी कशिश, और मेरे साथ
0: मैं जुम्मन चाचा।
1: जुम्मन चाचा जी आ गए हैं आपको जो है क्या हो रहा है क्रिकेट में ये बताने के लिए।
0: अले जी कल दो मैच हुए थे
1: जी,
0: बहुत बढ़िया खेला लोगों ने। अरे छक्के पे छक्के लगाने की कोशिश की गई थी।
1: यस
0: ठीक है, पहला मैच में बात करूंगा पंजाब और गुजरात की।
1: आई हाय
0: ठीक है, पंजाब ने 163 बनाए।
1: हाँ।
0: अब देखिए पंजाब के टैलेंट के हिसाब से कम है स्कोर जो है,
1: जिस हिसाब से खेल रहे हैं उस हिसाब से तो काफी
0: थोड़ा कम है। मुझे लगता है ये हार जरूरी थी, नजर लग रही थी थोड़ी थोड़ी, ये अब ठीक है,
1: ये अब काला टीका लग गया है,
0: काला टीका लग चुका है। गुजरात ने 167 बनाए 19.5 ओवर में, यानी कि मैच तो टाइट था भाई, बहुत टाइट मैच था। बहुत कोशिश की पंजाब ने जीतने की, बॉलिंग से गेंद फेंक फेंक के मारा, फेंक फेंक के मारा, मगर गुजरात वालों ने बल्ले से वापस मारा, बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाया, जिता दिया गेम।
1: वो तो जिता तो दिया जी गेम देखो, पर मैं तो कह रही हूँ कि असली मजा तो जो है वो हैदराबाद और कोलकाता के मैच में आया, और मैच में तो आया ठीक है वो आया। सोशल मीडिया पे दोनों जो टीम है उन्होंने कमाल कर दिया। पहले स्कोर बताती हूँ मैं, उसके बाद फिर आपको बताऊंगी मैं कि क्या है। सो
0: हाँ कोई बात नहीं, होता है
1: इतना सारा सारा टेक्स्ट जो है वो अगर चैट जीपीटी से स्कोर पूछो तो सीधा स्कोर बताना चाहिए ना इसको।
0: हाँ, तो स्कोर है 165 स्कोर किए थे हैदराबाद ने 19 बॉल्स में जो है 19 ओवर्स में ऑल आउट हो गए थे वो। और कोलकाता ने जो है 169 स्कोर किए 18.2 ओवर्स में, 3 विकेट गिर गए थे उनके, 7 विकेट से जो है तला फॉर अ रीजन। यस बेटा तला फॉर अ रीजन।
1: हो गया गाइस आपका, हो गया। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ना अभी।
0: हाँ ठीक है।
1: हाँ मैं ये बता रही हूँ कि ये जो मैच जो है वो फील्ड पे तो चल ही रहा है लेकिन साथ में सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। तो जो पिछला मैच हुआ था इन दोनों टीम्स का, तो हैदराबाद ने एक पोस्ट की थी जहाँ पे बिरयानी उनके हाथ में थी एंड वो कोलकाता का सीन था और लिखा था कि चलिए आज जीत की बिरयानी हमारे तरफ से। कल कोलकाता ने वापस एक पोस्ट किया है, पीछे हैदराबाद का बैकग्राउंड है, हाथ में वही बिरयानी और लिखा की आज की पार्टी हमारी तरफ।
0: अरे वाह बेटा वाह, ये आता ना मजा जब मार्केटिंग या फिर ब्रांडिंग में भी हम ये सब करते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं, ये क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, बट बहुत सारे ब्रांड्स जो अगर हम अमेरिका में बात करें, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो भी ये एड वॉर्स जो है
1: करते हैं, और मुझे तो बहुत मजा आता है,
0: बहुत मजा आता है जो क्रिएटिविटी देखने को मिलती है भाई। और स्पेशली हम इस फील्ड में काम करते हैं तो हमें वो रियलिटी का चाटा लगता है कि यार सोचना ऐसे होता है, तुम क्या ही कर रहे हो करके।
1: ये वो कुछ ऐसे एड्स होते हैं, ऐसे कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं जिन्हें देख के आपको स्किप करने का मन नहीं करता।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बस हमारी बस यही कोशिश है कि आपको ऐसे ही इंटरटेन करते रहे और बाकी कल के मैच की बात थोड़ी सी देर में करें,
0: थोड़ी सी देर में करते हैं।
1: आज के मैच की बात
0: थोड़ी सी देर में करते हैं। कूल सॉन्ग ऑफ द आवर, खाना नहीं खाया ना, दवाई भी नहीं खाई आपने, कोई बात नहीं, अभी गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और कहते हैं
1: जी बिंदास। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: this, the most awaited safari items for Qatar Riyal 10 2030 is back on all safari outlets. Save big on categories like bakery, fresh food, groceries, household electronics, cosmetics, toys, ready-made and IT, and everything else starting from May 4th. Don't miss out. Visit your nearest safari hypermarket today and get a chance to win 30 best-tuned cars.
1: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
5: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: क्या बात है यार, क्या गाना।
1: जैसे ही वो दीदी हबीबी चिल्लाई, तनीषा हमारे स्टूडियो में पहुंच गई।
0: यस, द रियल हबीबी इज इन द हाउस गाइस।
1: हबीबती एक्चुअली, ग्रामेटिकली स्पीकिंग।
0: वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूं आपकी कशिश और
1: मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई हम आज के मैच की बात करना चाहेंगे।
0: यस, आज के
1: मैच के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं लोगों को कि स्टूडियो की खूबसूरती जो बढ़िया है अभी।
0: यस, 16 चांद लग गए हैं,
1: इतना बढ़िया वॉलपेपर सजाया है हमारे डिजिटल टीम ने, क्या बताऊं मैं, मजा आ गया देख के। मगर एक्चुअल सच्चाई ये है कि हमारे स्टूडियो में थोड़ी देर पहले तनीषा आके गई थी और तनीषा को जैसे ही हमने देखा कशिश का जबड़ा गिर गया
0: लगा जैसे।
1: बाकी नहीं पता ना मुझे।
0: अच्छा,
1: इसलिए मैंने शुरू नहीं किया था।
0: फाइन, ऐसा लगा जैसे आरसीबी जो है वो जीत गई है।
1: जीत गई,
0: ऐसा लगा वो खुशी हुई जो आरसीबी की जीत।
1: देखो, लगना अलग है, होना अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं,
0: चलिए आज के मैच में आते हैं गाइस।
1: हाँ, आज की बात करते हैं, आज क्या होने वाला है।
0: तो मुंबई और लखनऊ के बीच में जो है आज मैच खेला जाना है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा?
1: मुझे लगता है कि देखिए दोनों में से किसी को कंपेयर करूं मैं, एक नाइन्थ में एक टेंथ में, ठीक है। मुंबई जो है अगर ये मैच जीत जाती है तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा पोजीशन उनके लिए बेटर हो जाएगा। लखनऊ का तो मैच हारने का स्ट्रीक चला हुआ है
0: एंड ये मुंबई के जो है होम ग्राउंड पे खेला जा रहा है, वानखेड़े स्टेडियम पे जो है खेला जा रहा है।
1: एंड मुंबई का पिछला मैच भी वानखेड़े में ही था, चेन्नई के साथ था।
0: चेन्नई की बात हम नहीं करना चाहते हैं यार। देखिए, जो लोग अभी ऐसे एक दो मैचेस जीत जा रहे हैं उनके बारे में हम बात नहीं करते।
1: जो लोग नया नया कप जीत जाते हैं उनके बारे में हम बात नहीं करते।
0: देखिए, आप लोग जो है मैसेज कीजिए 3311063 पर और ये बताइए कि आज आपको क्या लगता है कौन जीतेगा एंड जनरली चेन्नई बेटर है या बैंगलोर बेटर है।
1: जनरली की बात कर रहे हो, चेन्नई बेटर है। जनरली तो हर तरह से बेटर है।
0: मैं अब नहीं चाहती कि सुदेव ज्यादा बोले, इसीलिए हम गाने के ऊपर जो है जाएंगे, स्किप करेंगे, गाने के ऊपर जाएंगे।
1: अच्छा, ठीक है। मैं गाने के ऊपर खड़ा हो जाऊं फिर। ओके गाइस,
0: कहो ना कहो गाने का नाम है तो आप ना ही कहे तो बेहतर होगा।
1: प्लीज कहने दो ना, तमल्ली मैक। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
0: चली गई।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में.
0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
1: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: देखो मैं तो यहीं पे हूँ और मेरे साथ जो है एक ये हैंडसम इंसान भी है.
1: थैंक यू सो मच.
0: आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने टैबलेट के बारे में बात कर रही हूँ.
1: मैं टैबलेट के ओर से थैंक यू बोल रहा था. मेरा नाम ही टैबलेट है.
0: ओह माय गॉड,
1: यस मैं ही हूँ वो टैबलेट. यस
0: हो गया. गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश
1: और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव.
0: सुदेव, ये जो रोज रोज आप न्यू आउटफिट्स जो है वो पहन के आते हैं, तो इन्हें क्या एक दिन पहले प्लान करके रखते हैं कि मैं ये पहन के जाऊंगा, इसके साथ मिक्स मैच करूँ? क्योंकि मैं तो सुबह सुबह जो है भले मैं कितना भी जल्दी उठ जाऊँ, मैं ना सुबह पहले जो आउटफिट मैंने दिमाग में सोच के मैं सोई थी वो पहनती हूँ, फिर वो अच्छा नहीं लगता, फिर उसको फिर से मिक्स मैच करती हूँ, इसमें मेरा बहुत टाइम चला जाता है. सो आप क्या?
1: मेरा ऐसा नहीं रहता. देखिए, आज तो बोला गया था कि एक नीड है, तुम्हें ड्रेस पहनना पड़ेगा करके, इसलिए मैंने जो है ये अटायर पहना है.
0: राइट.
1: तो जो लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या पहन, ऐसा क्या पहन लिया सुदेव ने, ऐसा कुछ नहीं है. Full black
0: outfit. Full oh black. My God.
1: The only thing which is not black in my outfit is my watch, जो सिल्वर कलर का है.
0: Nice.
1: वो भी मैं ब्लैक ही पहनने वाला था, मगर
0: पर वो अच्छे से मैच कर रही है. सो पर ये देखिए, आपका तो लगभग सॉर्टेड रहता है, पर जिन लोगों का सॉर्टेड नहीं रहता है उनको मैं बता सकती हूँ कि अब आपका की जो गूगल फोटोज वाला ऐप है जो आपके फोन में, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है. एक AI फीचर लॉन्च किया है गूगल ने, जिसमें अब वो आपके कपड़े एनालाइज कर लेगा आपकी गैलरी में से, फोटो गैलरी में से, और ये बताएगा कि अरे ये तो आपने कल ही पहना था.
1: अच्छा.
0: ये तो आपने परसों ही पहना था, और आपके कपड़े आप किस तरीके से मिसमैच करके पहन सकते हो.
1: अच्छा.
0: ये भी वो आपको बता देगा. तो देखो बहुत ही अच्छा फीचर है. आपको ये फीचर कैसा लगा ये भी आप हमें बताइए. तब तक ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो एंजॉय कर लेते हैं.
2: Song of the hour.
3: Ye gana.
0: Ye. Oh, Romeo. Romeo movie se track aur aapke radio sets par.

0: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
0: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
0: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: पता नहीं कहां कहां से लिरिक्स जो है ढूंढ ढूंढ के लिखे जाते हैं. देखो वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए जो है बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ. अब देखो यार अलग अलग टाइप के जो डांस मूव्स जो है वो सुदेव अक्सर करके दिखाते हैं और अभी अलग सा पक्षी टाइप का बर्ड टाइप का जो एक स्टेप है वो ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
1: आपने जिसे ढूंढता हूँ मैं
0: हर गली
1: तो उसमें एक स्टेप
0: क्यों कौन सी लड़की जो है आपको दिख गई है जिसको आप ये कहना चाहते हो वो लड़की है कहाँ
1: दिखी नहीं ढूंढ रहा हूँ ना.
0: अच्छा
1: ढूंढ रहा हूँ अभी तो वही चल रहा है.
0: ठीक है पर आप मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले थे और आप बाहर पानी पीने चले गए. आई नो हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन इंफॉर्मेशन भी तो इंपॉर्टेंट है.
1: इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो. बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि एक कहानी जो है शेयर की गई थी हमारे साथ कशिश ने शेयर की
0: ऑब्वियसली.
1: तो एक बच्चा होता है वो सुपर कार्स का बहुत फैन होता है एंड वो एक डिजीज से जूझ रहा होता है.
0: Yes.
1: और उसकी मम्मी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट डालती है कि मेरा बेटा चाहता है कि उसके बर्थडे के दिन वो एक सुपर कार देखे.
0: Yes, उसका बस एक सपना होता है यार उसको सुपर कार बहुत पसंद है तो एक सुपर कार वो देखे एंड उसके बर्थडे क्योंकि वो ज्यादा बाहर अपने घर से मूव नहीं कर सकता सो उसकी मम्मी फेसबुक पे एक पोस्ट डालती है कि मेरा जो बेटा है उसका बर्थडे है इस डेट पर सो अगर किसी के पास भी सुपर कार है सो क्या वो एक अपनी वो सुपर कार लेकर हमारी विंडो के सामने आ सकता है ताकि मेरे बेटे की जो बर्थडे विश है वो पूरी हो सके. एंड आई किड यू नॉट 1000 से ज्यादा जो सुपर कार्स थी
1: जी बड़ी तादाद में जो है
0: सुपर कार्स थी वो उनके घर के सामने उस विंडो के सामने वहां पर मौजूद थी. एंड यार मतलब सच में जब आप मतलब सेल्फलेसली कुछ ऐसे करते हो ना तो अच्छा लगता है. एंड
1: पता चलता है कि यार ह्यूमैनिटी जो है अभी भी है
0: जिंदा है. एंड मतलब उसकी मम्मी ने वो मैसेज लिखते हुए फेसबुक पे पोस्ट करते हुए इतना सोचा नहीं होगा कि यार इतने सारे लोग आ जाएंगे. एक होप थी उनके मन में कि चलो कोई एक पढ़कर आ जाएगा.
1: एक आ जाएगा दो आ जाएंगे मगर इतनी हजारों की तादाद में जब लोग आते हैं तो हमें इससे यही पता चलता है कि दिस इज ह्यूमैनिटी दिस इज व्हाट इट मींस टू बी अ ह्यूमन. तुम किसी और के लिए उसके मुश्किलात में उसका साथ देने के लिए अपने साइड से क्या कर सकते हो वो तुम करते हो. और मुझे याद है ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं स्पेशली रॉबर्ट विलियम्स. रॉबर्ट विलियम्स के बारे में बहुत फेमस कहानी है. एक गोरिल्ला के पास हो गए थे.
0: अच्छा
1: वो गोरिल्ला महीनों में हंसी नहीं थी.
0: ओह
1: और उनको देखकर ही मैनेज्ड टू यू नो मेक दैट गोरिल्ला लाफ.
0: ओह
1: और जब गोरिल्ला को पता चला कि ही इज नो मोर वो नहीं आते हैं शी वाज आल्सो सैड. तो कुछ लोग अपनी छवि छोड़ जाते हैं ठीक है अपने एक्शंस के थ्रू. तो अब यहाँ पे जरा देखिए सक्सेस जो वर्ड है उसके ऊपर हमें सवाल करना पड़ेगा कि क्या सक्सेस है. एक इंसान जो अभी भी वो है नहीं हमारे बीच में मगर फिर भी हम उसके बारे में बात करते हैं
0: उनकी अच्छी चीजों को उनके अच्छे कामों को याद कर रहे हैं राइट
1: वो सक्सेस है या फिर बहुत सारा पैसा कमाना. देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि पैसा कमाना नहीं चाहिए. मैं भी शाहरुख खान की बात को फॉलो करता हूँ कि फर्स्ट बी रिच देन बिकम अ फिलोसोफर. मगर एक्चुअली क्या है सक्सेस. सक्सेस ये है कि हम लोगों के दिल में रहते हैं हमारे जाने के बावजूद भी हमारी लेगेसी जो है उनके यादों से उनकी बातों से रहती है या फिर अपने कार्यकाल में जितना भी कुछ हम कमा सकते हैं वो है सक्सेस. आपको क्या लगता है अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं कहीं ना कहीं इस बात ने कुछ ना कुछ तो सोचने के लिए आपको मजबूर किया होगा. बताइए 3311063 पर मैसेज करके या फिर कॉल कीजिए 4444106 पर और बताइए आपकी राय क्या है इस मामले में.
0: यस तब तक जो है एक अमेजिंग वाला गाना और आपकी रेडियो सेट्स पर इसे एंजॉय कीजिए और हमारे साथ कहते रहिए
1: जियो बिंदास.

0: short break. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: Hi, I'm Divya Datta. And you're listening to Radio Olive, Jio Bindas. I'm in
2: number one, Radio Olive. Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: यार मेरे लिए पूरा का पूरा गाना बना दिया गया यार। देखो मतलब सेल्फ ऑब्सेस नहीं हूं मैं, लेकिन खुद की तारीफ करते रहना तो इम्पोर्टेंट होता है ना। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग जो है वो लेकर आ गई हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अमेजिंग मैसेजेस जो है वो करके रखे हैं। इकबाल खान जी ने पूछा है कि आप दोनों कैसे हैं। वैसे अभी तो मैं बताऊं कि अभी तो मैं अकेली हूँ। सुदेव जो है वो वापस अपना वाटर इनटेक जो है वो पूरा करने के लिए, पानी पीने के लिए बाहर गए हुए हैं। एंड मैंने जो है ये बताना चाह रही थी आपको कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि ह्यूमैनिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक मम्मी ने जो है अपने बच्चे के लिए सिर्फ एक मैसेज डाला था फेसबुक पे कि यार मेरे बेटे को जो है घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है उसकी तबीयत की वजह से, हेल्थ कंडीशन की वजह से, लेकिन उसका बर्थडे और उसे सुपर कार्स बहुत पसंद है। क्या आप में से कोई एक जिसके पास सुपर कार है वो क्या विंडो के सामने जो है शो अप कर सकता है? एंड आई किड यू नॉट, बहुत सारे लोग जो है अपनी सुपर कार्स के साथ आ गए एंड बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। एंड यार ये चीज़ें हैं जो हमें ना हमेशा मोटिवेट करती हैं कि यार चलो आप कुछ अच्छा दोगे यूनिवर्स को तो यूनिवर्स भी आपको कुछ अच्छा देगा। एंड बस आपसे यही पूछा था कि आपको क्या लगता है असली जो, अगर मैं बात करूँ असली अमीरी किस चीज़ में है, तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया। सबने कहा है कि यार देखो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ में ह्यूमैनिटी भी इंपॉर्टेंट है। एंड लगभग जितने लोगों ने आंसर किया है उन सब ने यही कहा है। सो आपको क्या लगता है आप हमें बता सकते हैं 3311063 पर मैसेज करके। फिलहाल एक जबरदस्त वाला गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
0: राधे मूवी से अमाल मलिक की आवाज में सिटी मार गाने का नाम है। सो ये गाना एंजॉय कीजिए और हमारे साथ कहते रहिए
2: जियो बिंदास।

0: Stun, can I win?
1: अमाल मलिक की तरह आवाज लग रही थी, लेकिन कमाल खान की आवाज है ये.
2: एंजॉय कीजिएगा ना,
1: और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: अजनबी कहाँ है यार, देखो अब हम
1: बिल्कुल अपने ही तो हैं।
0: तभी तो सब मेरे से मेरी तबीयत पूछ रहे हैं। अच्छा लग रहा है यार, ठीक है, प्यार मिल रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है,
1: प्यार मिला।
0: बस बस बस, चलिए। Welcome back, 106.3 Radio Olive पर मैं हूँ आपकी कशिश
1: और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव।
0: अब क्या है कि सुदेव एक बार गाना शुरू करते हैं तो फिर हमारा मन कहाँ करता है कि उन्हें बोलें कि यार सुदेव रहने दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा गाते हैं।
1: तारीफ पे तारीफ,
0: हमें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है यार, इसीलिए आप बताइए।
1: बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज बहुत खास दिन है हमारे लिए।
0: यस, आज बहुत खास दिन है हमारे लिए।
1: खास दिन क्यों है उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, 9th को जो है अमीरी कप का फाइनल होने वाला है, जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और उस फाइनल के पहले जो है अमीरी कप का ट्रॉफी टूर चल रहा है, और वो ट्रॉफी टूर आज हमारे ऑफिस में। बहुत ही मजेदार दिन है हमारे लिए, हम सब इंतजार कर रहे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी है। और अमीरी कप फाइनल के बारे में डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अभी 9 मई को होने वाला है अमेरी कप का फाइनल। गेट्स जो है वो 2:30 PM को ओपन हो जाएंगे। किक ऑफ होगा 5:30 को खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है जोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है।
0: जो फैंस हैं उनके लिए भी काफी सारे ऐसे गिग्स जो है वो अलग अलग जगहों पर है, काफी सारे प्राइजेस जो है फैन जोन्स में वो है। सो मैं तो देखो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने मतलब जब मैं कतर आ रही थी मैंने इमेजिन किया था यार ऐसा कुछ होता होगा,
1: एंड
0: अब मैं फाइनली वो सब देख पा रही हूँ।
1: और मुझे और खास इसलिए लग रहा है क्योंकि अमीरी कप का जो शेड्यूल था कि कौन सा टीम किसके साथ खेलेगी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरी जो जर्नी है इस साल के अमीरी कप के साथ शुरू हुई है। तो अब जब मैं फाइनल के करीब पहुंच रहा हूँ और आज ट्रॉफी टूर हो रहा तो काफी बढ़िया लग रहा है, एक्साइटमेंट बिल्कुल पीक पर है। तो बहुत खुश है। जैसे खुशी के साथ साथ हम ये भी बता दें कि आप रेडियो ऑलिव के सोशल मीडिया चैनल्स पे बने रहिए।
0: yes.
1: आपको हम जो है स्टोरीज में लाइव में आपको दिखेगा सारा कुछ जो यहाँ पे होने वाला है। तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया
0: तो फॉलो कर लीजिए,
1: सीदा जाइए, एक ही बार फॉलो बटन दबाइए। yes. दो बार दबाइए, एक ही बार दबाना है आपको, सारे अपडेट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। और यही बोलते हुए हम भी अभी आगे बढ़ते हैं,
0: बिल्कुल अगला गाना जो है वो आपको सुनाते हैं केके की आवाज में, जन्नत मूवी से। जरा सी
1: दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले, मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपना।
0: बिल्कुल, और इसके साथ कहते रहिए
1: जियो बिंदास।

0: जी मैं हाँ हरभजन मान
1: भजन मान
0: तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM
1: जियो बिंदास
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 10 बजने वाले हैं, मुस्कान आने वाली है और पूरे फैलान के साथ मुस्कान जब आएगी तो आप भी जरा खुली बाहों से स्वागत कीजिएगा। जितना प्यार हमें दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार दीजिएगा।
1: बिल्कुल जी, और मैं तो बस इतना कहती हूँ कि आपको अपना ख्याल रखना है, आपके अपनों का ख्याल रखना है, गाड़ी जो है वो धीरे धीरे हौले हौले चलाना है, पानी जो है वो पीते रहना है और बाकी
0: चिल करना है, एंजॉय करना है, पूरे दिन को बिंदास बनाना है और कहते रहना है
1: जी ओ बिंदास।
0: तो चलिए हम निकलते हैं टाटा बाय करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ ग्रेट डे।
1: बाय बाय।

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
4: This hour is brought to you by
5: Homestar Us. We complete your home.

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. नया दिन नई एनर्जी, लेकिन सवाल ये है कि एनर्जी है भी या नहीं. मतलब कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि अलार्म बजता है और आप सोचते हो कि 5 मिनट और, भाई आज सुबह से मैं यही कर रही हूँ, फिर वो 5 मिनट 30 मिनट्स बन जाते हैं और फिर डे स्टार्ट होता है थोड़ा लेट थोड़ा हैवी. लेकिन आज का थॉट थोड़ा सा सिंपल है, यू डोंट नीड परफेक्ट एनर्जी, यू जस्ट नीड अ स्टार्ट. ठीक है, मतलब कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये स्टार्ट कैसा है, यू आर नॉट टू लेट, बेसिकली यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. भाई आज सुबह मैंने इसे 5 मिनट करके ना पूरा 1 घंटा लेट किया खुद को उठाने में. और हर दिन मोटिवेशन से नहीं बल्कि हैबिट से चलता है, जो हैबिट मेरी बन नहीं पा रही है. तो अगर आज स्लो फील कर रहे हो आप तो इट्स ओके, बस स्टार्ट कर लो, एनर्जी खुद आ जाएगी. एंड इवन आई वॉज फीलिंग सेम कि यार सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि सीधे बॉस को बोल दो कि सर आज चाहिए छुट्टी. लेकिन मैंने फिर खुद को एनर्जी में, मतलब खुद लेकर आने की कोशिश की और सोचा कि यार आपसे बात करके तो मुझे एनर्जी आती है. तो बस मैं तैयार हुई फटाफट से और ऑफिस आ गई और फिलहाल आपसे बातें करने के लिए बहुत सारी नई चीजें लेकर आई हूँ. सो वी विल स्टार्ट, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio Olive.
1: I'm a number one. Time check. Time check. Brought to you by Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
5: गुलराज सिंह
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
5: जियो बिंदास.
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: सो इफ यू आर गेमिंग लवर तो ये जो अपडेट है ये आपके लिए एकदम ड्रीम जैसा है. मतलब कतर में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि यार ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बनता जा रहा है. सो 28th ऑफ जुलाई से 27th ऑफ अगस्त तक एक इंटरैक्टिव इवेंट होने जा रहा है जहां पर आप बिल्ड कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और सर्वाइव भी कर सकते हो. गेम स्क्रीन से बाहर आ रहा है और रियल लाइफ में आ रहा है. सोचिए वहाँ पर ब्लॉक्स होंगे, चैलेंजेस होंगे और क्रिएटिविटी होगी, सब कुछ फिजिकल स्पेस में. गेमिंग ना अब सिर्फ प्ले नहीं बल्कि एक्सपीरियंस बनता जा रहा है. एंड आई वॉज वंडरिंग कि भाई इतनी सारी चीज़ें जब कतर में आ रही हैं तो फिर आपको बताना तो बनता है. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है, वेयर वी टॉक अबाउट एवरी ब्यूटीफुल थिंग. और जो भी कतर में चीजें चल रही होती हैं, आ रही होती हैं, स्पेशली बच्चों के लिए कुछ नया होता है तो आई ट्राई कि मैं भाई आपको बताऊं. सो मुझे ऐसा गेमिंग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मतलब मुझे हमेशा से गेम्स ना बहुत डिफिकल्ट लगा करते थे. बट मैंने हमेशा से अपने सिबलिंग को ऐसे ना हमेशा गेम्स में ही देखा है तो मुझे लगा कि भाई लोगों को बहुत ज्यादा गेम्स पसंद है. तो गेमिंग वर्ल्ड इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड. तो अगर आपको भी पसंद है तो यू कैन चेक आउट. और अभी टाइम है, बाकी की सारी डिटेल्स मैं आपको विद टाइम देती रहूंगी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Jio Windows. Tough काम और भी आसान. Carmel Group लाया है Shantui के wheel loaders, excavators और bulldozers. मजबूती ऐसी जो हर challenge जीत ले. Visit Carmel Group.

तो अगर आपको लगता है कि म्यूजियम बोरिंग होते जा रहे हैं तो ये परसेप्शन चेंज होने वाला है। कतर म्यूजियम ने May 2026 यानी मई तो चल ही रहा है, मतलब टुडे इज 4th of May, सो May 2026 के लिए काफी इंटरैक्टिव प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। स्पेशल फोकस है कैलीग्राफी, क्रिएटिविटी और फैमिली लर्निंग पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में वर्कशॉप हो रहा है जहां पर आप यू नो डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करते हो, मतलब आर्ट सिर्फ देखना नहीं है सीखना भी है। और बच्चों के लिए जो प्लैनेट किड्स क्लब है वहां स्पेस थीम के साथ लर्निंग होती है। एजुकेशन जब इंटरेक्टिव होती है ना तब फन लगता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो बच्चों के लिए स्पेशली जो प्लैनेट किड्स क्लब है जहां पर स्पेस थीम के साथ लर्निंग हो रही है, मुझे लगता है कि वो बच्चों के लिए बेस्ट पार्ट है यहाँ पर सीखने के लिए। मैं आज इतनी बड़ी हो चुकी हूँ पर कोई भी मुझे यू नो सुनने को मिलता है कि किसी ने कोई नई चीज लॉन्च की है, कुछ नया स्पेस में आ रहा है, तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है। और सोचिए बच्चों को कितना मजा आएगा जब वो नई नई चीजें सीखेंगे। सो उनको जरूर ये सब एक्सपीरियंस करवाइए और सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सो आज की बुक थोड़ी सी फिल्मी है, थोड़ी सी इमोशनल है और ऑनेस्टली दिल को बहुत छूकर जाती है. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. एंड लेट्स टॉक अबाउट बुक जो कि 1998 की ये नॉवल है, दुनिया भर में बेस्ट सेलर. और इसका कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है फिर भी इतना पावरफुल. बुक का नाम है मैसेज इन अ बॉटल.
1: ओके, बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: सो बेसिकली 1998 की ये नॉवल जो है दुनिया भर में बेस्ट सेलर है और इसका कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है फिर भी इतना पावरफुल. सोचिए एक लड़की बीच पर वॉक कर रही है और उसे एक बॉटल मिलती है. बॉटल के अंदर एक लेटर, एक आदमी का जो अपनी लॉस्ट लव के नाम पर लिख कर गया था. सो एक अननोन मैसेज लेकिन इमोशनल और बिल्कुल रियल जैसा. उस लड़की को क्यूरियोसिटी होती है कि ये कौन है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है और फिर वो उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ती है. कभी कभी एक छोटी सी चीज़ लाइफ को डायरेक्शन चेंज करके दे देती है. सो स्टोरी सिर्फ लव की नहीं है, ये हीलिंग की भी स्टोरी है. जो नुकसान को कैसे डील करना है, मेमोरीज को कैसे कैरी करना है और कैसे कभी कभी लाइफ सेकेंड चांस देती है आपको. और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, लव लाउड नहीं होता, वो लेटर्स में चुपके से और कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहा होता है. सो ये बुक आपको ये रियलाइज़ करवाती है कि कुछ कनेक्शंस जो होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं बट बहुत ज़्यादा डीपली मीनिंगफुल होते हैं. सो इफ यू लाइक बुक्स लाइक दिस, यू कैन रीड दिस बुक जिसका नाम है मैसेज इन अ बॉटल. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो

भाई यस्टरडे वॉज सच अ ब्यूटीफुल मैच. मैं उसको पूरा देख रही थी, गुजरात वर्सेस पंजाब का. और आखिरी बॉल, मतलब आखिरी दो बॉल बची थी और रन चाहिए थे पूरे दो. उसमें गुजरात ने एक लास्ट बॉल से पहले, मतलब सेकेंड लास्ट बॉल पर छक्का मारा और सीधे जो रन था वो 167 पहुंच गया सिर्फ 6 विकेट के नुकसान पर. सो जो क्रिकेट मैच था वो 19 ओवर 5 बॉल में खत्म हो गया क्योंकि एक बॉल अभी भी बाकी थी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो बेसिकली आज मैं अगर आपको मैचेस की बात करके बताऊं तो कल दो मैचेस थे जिसमें मैंने शाम वाला मैच देखा था, विच वॉज गुजरात वर्सेज पंजाब. भाई प्रीति जिंटा वॉज सो टेंस्ड, पर उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि यार शी इज सो, मतलब वेरी वेरी स्वीट, और उन्होंने कितनी मेहनत की अपनी टीम को लेके. पर आज के मैच की अगर बात करूं तो आज ऋषभ पंत कितने रन बनाएंगे और मोहसिन कितने विकेट उठाएंगे ये तो पता चलेगा शाम को, क्योंकि शाम को मैच है मुंबई वर्सेस लखनऊ का. बाय द वे, विच इज योर फेवरेट टीम बताओ मुझे 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Radio Honest, your happiness frequency.
1: Time check. Time check. Brought to you by Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor. Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: दिस इज अमायरा दस्तूर ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सुबह कतर के जो एथलीट्स हैं वो फिर से ग्लोबल स्टेज पर शाइन कर रहे हैं। 4x400 meter रिले टीम ने वर्ल्ड एथलीट जो चैंपियनशिप बीजिंग है 2027 के लिए वो क्वालिफाई कर लिया है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। और सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, नेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। और आई वॉज थिंकिंग कि भाई टीम कितनी अमेजिंग है जिसमें इतने सारे जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। ये सिर्फ टाइमिंग नहीं, बेसिकली प्रोग्रेस का सिग्नल है। पहली बार ओपनिंग राउंड से क्वालिफाई करना हिस्टोरिक मोमेंट बन गया है। सो इसके लिए चाहिए सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस प्लस जो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है वो तभी आपको मिलता है। एंड आई वॉज थिंकिंग कि कतर में बहुत सारे जो गेम्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। इवन कतर के जो प्लेयर्स हैं वो अलग अलग कंट्री में अपना जो खेलने के लिए जाते हैं एंड वहाँ से भी कुछ ना कुछ वो सीख कर और जीत कर ही आते हैं। बाय द वे, आप अपने बच्चों को किस गेम के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि उन्हें खेलना चाहिए? इज़ दैट फुटबॉल और कोई अदर गेम, या फिर आपके बच्चों को भी क्रिकेट का शौक है? बताइए मुझे 3311063 पर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बचपन में वॉलीबॉल खेला करती थी और मैंने एक्चुअली स्टेट लेवल तक खेला। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल टाइम जब हमें सिर्फ खेलने के लिए टाइम चाहिए होता था और बाकी का टाइम हम घर पे सिर्फ खाना खाने, सोने और गप्पे मारने आते थे। सो दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल टाइम, मतलब अलग ही टाइम होता है बचपन का। आप मुझे बताओ कि आप अपने बचपन में कौन से खेल खेला करते थे। नंबर सेम है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट

0: सो यू ऑलरेडी नो कि जो मूवी है डेविल्स वेयर परारा, उसका सेकेंड पार्ट जो है वो 20 साल के बाद रिलीज हुआ है एंड एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड. पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप होपफुली मुझसे गुस्सा नहीं होंगे. बात ये है कि मैंने फर्स्ट पार्ट देखा ही नहीं था एंड मतलब जैसे ही वो सेकेंड पार्ट आया एंड एवरीबॉडी वॉज सो एक्साइटेड कि भाई देखना है देखना है, तो मैंने फटाफट से ओटीटी पर पहले पहला पार्ट देखा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. अब पहला पार्ट देख लिया तो बॉस दूसरा पार्ट तो देखना ही पड़ेगा. सो अब मैं सोच रही हूं कि किसी अच्छे से थिएटर में जाके फटाफट से एक मूवी देखी जाए, विच इज डेविल्स वेयर परारा 2. सो आप मुझे बताओ कि आपने वो फर्स्ट मूवी जो फर्स्ट पार्ट था वो कितने साल पहले देखा था. 3311106 इज माई नंबर. और साथ ही साथ बात कर रहे थे यहाँ पर मैचेस की. सो पंजाब और कल जो मैच था जिसमें सामने गुजरात की टीम थी, वहां पर पंजाब के खिलाफ जो मोहम्मद सिराज, जिन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए थे, उन्होंने प्रियांश आर्या और जेवियर बार्टलर को लगातार जो बॉल्स हैं उन पर आउट किया था. सो ये तीसरी बार है इस पूरे 2026 के टूर्नामेंट में कि उन्होंने पहले ओवर में 2 विकेट चटकाए हैं. और इस लिस्ट में जोफ्रा आर्चर पहले नंबर पर हैं जिन्होंने इस सीजन में 5 बार ऐसा किया है. सो उसके बाद मोहम्मद सिराज आ गए, फिर मोहम्मद शमी है, फिर प्रफुल्ल हिंगे हैं. इन तीनों ने 3-3 विकेट लिए हैं पहले ही ओवर में एंड इट वाज लाइक रियली. सो दिस इज़ लाइक यार ये तो बहुत प्रैक्टिस है, कंसिस्टेंसी. और ऑफकोर्स ये उनका दिन भी होता है कि कभी कभी दिन बहुत अच्छा है, आपने अच्छा स्टार्ट किया और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हो भी रही हैं. सो बिल्कुल वैसे ही होता है. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. और वक्त हो गया है जोहर की अजान का.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Life

0: सो अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो प्रॉब्लम एक्चुअली आपके फोन में नहीं, आपके प्लेट में हो सकती है। बेसिकली यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। सो क्या होता है ना कि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती और सुबह मेरी नींद खुलती नहीं है। तो इसका रीजन है लेट नाइट डिनर, स्लीप का बिगेस्ट एनिमी। मतलब अगर आप डॉक्टर से पूछोगे और आप उनसे बोलोगे कि आप 10 में से कितने नंबर दोगे, तो या तो आपको 0 देंगे या फिर माइनस देंगे, क्योंकि डाइजेशन एक्टिव रहता है और बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती रात को। बॉडी को रेस्ट चाहिए लेकिन वो काम कर रही होती है। सो अगर आप किसी को कहो कि नहीं यू हैव रेस्ट, मतलब आज आपकी छुट्टी है, पर फिर आप उसे पूरा दिन वर्क फ्रॉम होम करने को दे दो, बताओ ये कोई छुट्टी हुई? सो ऐसे ही हम बॉडी के साथ करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं अब तो तुम्हारा सोने का टाइम है, लेकिन हम खाना खा लेते हैं, रात को जंक खा लेते हैं यार, चिप्स खा लेते हैं, मैगी खा लेते हैं, और फिर रिजल्ट क्या होता है? डिस्टर्ब्ड स्लीप, मॉर्निंग फटीग। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लाइट डिनर करना है, अर्ली डिनर करना है, और थोड़ा सा गैप लेना है। मतलब सोने और खाने के बीच में बहुत गैप होना चाहिए, 2-3 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। स्लीप इंप्रूव करनी है तो रूटीन इंप्रूव करना ही पड़ेगा। बाय द वे यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है।
1: Radio

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
3: हाय, दिस इज कैलाश खेर एंड यू आर लिसनिंग टू कतार्स फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव

0: You know, I was watching my friends on Instagram, जो कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया explore करते रहते हैं, और फिर मैंने कुछ और influencers को explore किया, जो कहते हैं कि अगर life में एक बार कुछ experience लेना है, तो ये list होनी चाहिए आपके पास. Music, dance, ये सब कुछ उसमें होना चाहिए. You are listening Radio All in 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान. शो का नाम है Life Must. अब आप कहोगे कि यार experience लेना है music और dance का, तो वो तो हम बच्चों को सिखाते ही हैं. But basically, अगर आप 30 साल के होने वाले हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप 30 साल के हो गए हो, तो कहा जाता है कि before 30 you should explore some festivals which is worldwide famous, जैसे कि Rio Carnival. So Brazil का Rio Carnival जो है, ये world का biggest state carnival है, street carnival जिसे कहते हैं, पूरे 10 दिन का, जहाँ पर music है, dance है और costumes हैं और energy, non-stop celebration, millions of people, streets full of colors होती है, और ये festival नहीं, life का celebration होता है. And I was wondering कि 10 दिन कोई कैसे मतलब इसे enjoy करता होगा. और ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ एक दिन या दो दिन के लिए जाते हैं, different type के लोग होते हैं दुनिया में, हर तरह के लोग इसे explore करते हैं. पर कहा जाता है कि इसको आपको young age में explore करना चाहिए, so that you have you know energy to explore everything. And I was wondering कि लोग wait करते हैं कि भाई 60 साल के बाद retire होंगे तो दुनिया घूमेंगे, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली 25 में ही न जाने कितने सारे देश घूमकर बैठे हैं. मतलब कहा जाता है कि एवरेज जो एज है घर खरीदने की वो 38 इयर्स है. लोग उसे 25 में ही पाना चाहते हैं, और मैं तो कहती हूँ कि भाई 25 में भी क्यों आपको अपना घर खरीदना है. अगर एवरेज एज 38 है, तो हो सकता है कि आप और मैं 40 में खरीद पाए, बट इट्स फाइन, राइट? मतलब कभी कभी लाइफ में देरी ठीक है, पर हमें अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए, घूमना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजों पर जाना चाहिए. सो यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM. थोड़ी देर में लौट कर आऊंगी. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. Awesome.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कहती है कि विमेन जो है वो इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करती है और रीजन काफी सिंपल है क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्सप्लेनिंग बेसिक इमोशनल नीड्स और ये आपको समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. मतलब मुझे सुनना, मुझे समझना, मेरे लिए प्रेजेंट रहना, ये सब उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर्स या उनके साथ जो लोग हैं वो नहीं कर पाते. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो भाई ये बेसिक चीजें हैं, बार बार एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं और ये बिल्कुल सच बात है. मतलब जितनी भी आपके आसपास जो भी आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनसे आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. पर लड़के जो है वो बात ही नहीं करते, उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है. सो बेसिकली ये स्टडी बिल्कुल ठीक लगती है मुझे, ऐसे पढ़ के तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही बात है कि यार लड़कियां जो है वो इमोशनल एग्जॉशन फील करती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई समझ तो कोई रहा नहीं है, सुन तो कोई रहा नहीं है. सो कम्युनिकेशन सिंपल होता है लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है वो मिसमैच कॉम्प्लेक्स बना देती है. और आज जब ये रिपीट होता है तो इमोशनल फटीग आता है. और सुनना भी एक स्किल है, सिर्फ बोलना नहीं. सो बेसिकली नेक्स्ट टाइम अगर आपको आपके कोई दोस्त, आपकी पार्टनर, आपकी सिस्टर या आपकी मदर कुछ सुनाए तो आप उनको आराम से बैठ के सुनिए, उनको कहानी की तरह सुनिए और उनको समझिए कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहती है, उनका ट्रॉमा क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद देखिए कि शी विल बी द हैप्पीएस्ट. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

सो आज के शो का रैप अप करते हुए एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई कि कभी आपने नोटिस किया है कि लाइफ हमेशा ना परफेक्ट टाइमिंग से नहीं चलती। कभी वीकेंड छोटा लगता है, कभी वीक लंबा लगता है, और कभी हम बस बीच में ही अटक कर रह जाते हैं, ना फुली रेस्ट ना फुली रेडी। लेकिन शायद लाइफ का मैजिक इसी में है बॉस, हर दिन कंप्लीट होने के लिए नहीं बल्कि कंटिन्यू होने के लिए बना होता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। बाय द वे, मैं आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जरूर रही हूं, पर मैं खुद इन सब में फंसी रहती हूं। और आज जो थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है ना, जो थोड़ा सा इनकम्प्लीट फील हो रहा है, वो कल का रीजन बन सकता है, और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। तो आज कल परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा काम, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा स्माइल, बस इतना ही काफी होता है। और कल फिर से मिलेंगे थोड़ी सी नई एनर्जी के साथ, थोड़ी सी नई बातों के साथ, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं है, बस आगे बढ़ती जाती है। इसी के साथ आई हैव टू से कि कल मिलते हैं सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है में। तब तक आप इन सुपर हिट गानों को एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए रेडियो ऑल ओवर, अपनी पुरानी पुरानी ताजे जो यादें हैं उन्हें ताजा कीजिए विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक्स। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने। रेडियो ऑलिव पर ऑलिव रिवाइंड।
2: बाहर से

के की आवाज में यारो दोस्ती ब्यूटीफुल ट्रैक और ऐसे फुल स्कूल और वो कॉलेज की अर्ली डेज की याद नहीं आ गई मुझे तो उसी की याद आती है जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम तनिषा आगे जी आपके साथ ऑलिवरी जॉर्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान. मंडे का दिन है आज.

0: May 4th अभी तक का हमारा दिन काफी इवेंटफुल रहा, क्यों बताऊंगी कुछ ही देर में। मीनवाइल आप जाके हमारे सोशल मीडिया पर भी चेक कर सकते हैं।
1: आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
0: हां जी, जिससे आज हम मिले सेम फीलिंग थी। ब्रेक के बाद मूवी से ये कमाल गाना इन दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इन द वॉइस ऑफ राहत फतेह अली खान साहब।
2: जहां रहूं
0: बहुत सुंदर यार।
2: मैं कहीं भी हूं तेरी याद।
0: नमस्ते लंदन मूवी से और साथिया से ये प्यारा सा गाना। All these amazing tracks are lined up for you in this hour. और ढेर सारे surprises बीच में और भी मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आपकी, क्योंकि आप बहुत important हैं मेरी जान। So 3311 1063 पर फटाफट से message कीजिए और बताइए क्या हाल चाल है। How has the day been so far? Monday May 4th कैसा treat कर रहा है आपको? सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? Share it with me। फटाफट से आ जाइए, message कीजिए और सुनते रहिए Radio Olive। जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Adesh Bhattacharya ki awaaz mein Andhadhun movie se aap se milkar acha laga. Bada hi sundar gana. Aur hame acha laga aaj milkar Ameer Cup trophy se. Ji haan. So trophy tour jo hai wo shuru ho chuka hai aur aaj trophy aayi thi hamare office mein. What a beautiful trophy it is. And you know, May 9th ko final hone wala hai Khalifa International Stadium mein sham 5:30 baje. To agar aapne abhi tak tickets nahi liye hain to fatafat se jaiye aur apni टिकट्स खरीद लीजिए एंड उस ब्यूटीफुल ट्रॉफी की ग्लिम्सेस आपको देखने को मिल जाएगी हमारे सोशल मीडिया पर radioolive.qs दी हैंडल फटाफट से फॉलो करो और चेकआउट करो अभी के अभी लेट्स सी कौन सी टीम इस बार वो ट्रॉफी ले जाती है एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जियो बिंदास कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: हिट रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज.
3: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
2: Olive Recharge
4: In association with
5: Homes are Us We complete your home
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
7: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. साधना सरगम की आवाज में बहुत सुंदर गाना साथिया मूवी से सुना. एंड कतर म्यूजियम ने मई 2026 के प्रोग्राम जो है वो अनाउंस कर दिए हैं और बहुत सारी वर्कशॉप्स, टॉक्स एंड फैमिली एक्टिविटीज जो है वो प्लान्ड है अक्रॉस मल्टीपल म्यूजियम्स. जी हाँ, सो एक्टिविटीज जो है वो सारी एज ग्रुप्स के लिए डिजाइन की गई हैं. इट फोकसेस ऑन लर्निंग, क्रिएटिविटी, कल्चरल एक्सचेंज और डिफरेंट डिफरेंट म्यूजियम्स में होंगी, डिफरेंट वेन्यूज पे होगी, क्रिएटिव हब्स पे होगी. तो काफ़ी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, जैसे कि म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में होने वाली है कैलीग्राफी वर्कशॉप. देयर विल बी सेशंस ऑन क्रिएटिविटी एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस. और एक किड्स प्रोग्राम भी प्लान किया गया है, प्लैनेट किड्स क्लब, जहाँ पे स्टोरी टेलिंग और क्राफ्ट्स के बारे में बताया जाएगा. एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ कतार में वर्कशॉप्स होने वाली है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के ऊपर. एंड एक्सपर्ट टॉक्स होंगी, आर्किटेक्चर फोरम होने वाला है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं बेस्ड ऑन हेरिटेज, आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री. मदाफ अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में आर्ट क्लासेस, हैंड्स ऑन क्रिएटिव सेशंस होंगे, कोर्सेज होने वाले हैं विच विल कंबाइन गैलरी लर्निंग प्लस प्रैक्टिकल आर्ट क्रिएशन, और काफ़ी पैनल डिस्कशंस एंड एवरीथिंग विल बी देयर. ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी डिफरेंट म्यूजियम्स में प्लान की गई हैं, तो आप चेकआउट कीजिए इन्हें. एंड वट एवर इंटरेस्ट यू, डू गो एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड लर्न न्यू थिंग्स. यस, और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास. Radio Olive.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha के साथ हैं आप और बहुत सारी वीडियोस देखेंगे अभी सोशल मीडिया पे जो बहुत रोटेट हो रही है डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड की, विच इज एन आउटडोर थीम पार्क इवेंट और 900 पार्क में ये हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग राइड्स हैं, लाइव शोज हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, मैस्कॉट्स हैं, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज हैं, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए। इट इज फुल फैमिली फ्रेंडली और यू नो आप वहाँ पे फूड कियोस्क मिलेंगे तो खाना भी बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे इवेंट बूथ्स हैं, फेस्टिव एटमोसफियर, फुल लॉन, मजेदार ऐसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो देरी किस बात की, 9th मई तक ये चलने वाला है और वीकडेज का टाइम संडे टू वेंसडे का रहेगा 4 PM से लेकर 10 PM और वीकेंड्स पे दैट इज आज से लेकर सैटरडे तक शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। अगर आपको इसकी टिकट्स चाहिए तो फटाफट से जाइए स्नूनू एस सिटी पर, वहां पर इसकी टिकट्स एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं। अलोंग विद दैट यू शुड गो ऑन आर सोशल मीडिया radioolive.qa क्योंकि वहां पर चल रहा है कॉन्टेस्ट जहां आप जीत सकते हैं डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड के टिकट्स। यस, गो एंड चेक इट आउट और सुनते रहिए रेडियो ओलिव, जियो बिंदास।

0: हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. तनिषा आपके साथ, अरिजीत सिंह और पूजा तिवारी की आवाज में पिपा मूवी से मैं परवाना हूँ. बहुत ही मस्त गाना सुना आपने.
1: और ट्रेंड में क्या है, क्या है? What's trending?
0: ट्रेंड में कमबैक किया है वायर्ड ईयरफोन्स ने. लॉन्ग टाइम अगो वी ऑल यूज टू हैव वायर्ड ईयरफोन्स. काफ़ी बार वो वायर जो है ऐसे इंटेंगल होकर टूट भी जाती थी. मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, नहीं तो अगर गिर गया है तो वो ईयरफोन जो उसका ईयर वाला पार्ट होता है ना वो टूट के बिखर जाता था. बट स्टिल वेरी रिलायबल, फ़ोन के साथ हमेशा लगे रहते थे तो दिक्कत नहीं होती थी हमें. फिर ज़माना आया जब फ़ोन्स ने ऑक्स पोर्ट ही बनाना बंद कर दिए. पहले तो ये काम आईफोन ने शुरू किया, उसके बाद अब बाकी सारी कंपनीज़ ने भी ये चीज़ें शुरू कर दी है. सैमसंग में भी अब ऑक्स पोर्ट्स नहीं होती है. सो यू हैव टू बाय either you know earbuds या तो फिर आपको टाइप सी वाले जो वो होते हैं earphones वो खरीदने पड़ते हैं. सो मोस्टली लोगों ने सोचा कि दिस इज easier टू buy earbuds, सो वी switch टू दैट. बट इट इज काइंड ऑफ इनकन्वीनियंट, और स्पेशली मुझे तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे earbuds मेरे कान में फिट ही नहीं बैठते. सो मेरे को बहुत चूज कर करके लेना पड़ता है. लेकिन अभी कुछ वक्त से देखा जा रहा है बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आर यूजिंग वायर्ड ईयरफोन्स. एंड ऑल्सो जो जेंजी है वो भी इसका ट्रेंड वापस लेकर आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया. एंड ऑल्सो इट इज वेरी मच इजिली एक्सेसिबल एंड बहुत ज्यादा फीजिबल है. एंड आई एब्सोल्युटली अग्री विद दिस, ले ही आना चाहिए. और मैंने सुना है कि शायद फोन्स में बैटरीज भी वापस आने वाली है. वो थोड़ा दिक्कत वाला काम है क्योंकि मुझसे फ़ोन बहुत गिरता है, और गिर के ऐसे जो बैटरी बिखर जाती थी नीचे बड़ी तकलीफ होती थी. तो अभी एटलीस्ट वो चीज़ नहीं हो रही है, बट वी नेवर नो और क्या क्या वापस आने वाला है. व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू कम बैक इन योर स्मार्टफोन्स, ये बताइए मुझे 3311106 पर. एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल इन जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम ड्रीम बिगर

0: तनिषा
1: तनिषा के साथ है आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम पर. रॉली रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. रोला तो तब बह गया था जब एआई आया और सबने कहना शुरू कर दिया कि भाई एआई तुम्हारी जॉब्स ले लेगा यार, अब तो गई जॉब हाथ से एंड इट विल रिप्लेस ऑल द ह्यूमन वर्क मोस्ट ऑफ देम. लेकिन चाइना ने एक बहुत बढ़िया कदम लिया है इसमें. दे हैव मेड इट इलीगल टू रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स विद एआई एंड दैट इज सच एन इम्पॉर्टेंट स्टेप. एंड आई थिंक सारी कंट्रीज को ये अप्लाई करना चाहिए रूल, यू नो, ये लेकर आना चाहिए. बिकॉज जो ओरिजिनैलिटी और जो डेडिकेशन और जो हार्डवर्क और एफर्ट्स आपको दिखेंगे एक ह्यूमन वर्क में, वो एआई में नहीं दिख पाएंगे. एनी विच वे एआई को भी ट्रेन किसने किया? इंसानों ने ही किया है ना. तो आप ऐसे ओजी से ही काम कराओ ना, आपको क्यों उसको रिप्लेस करना है किसी और से? नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. दीज जॉब्स आर पीपल्स ब्रेड एंड बटर. टेकिंग दैट अवे एंड यूजिंग अ मशीन टू डू इट टेक्स अवे ऑल द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वर्क. एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस स्टेप विच चाइना हैज टेकन एंड आई थिंक अदर कंट्रीज शुड ऑल्सो फॉलो द सूट. सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक ज्योति नूरा की आवाज में, तेरे इश्क ने यार, फ्रॉम द मूवी धुरंधर द रिवेंज. स्टे ट्यून्ड एट जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में दिल ही तो है फ्रॉम द मूवी द स्काई इज पिंक. जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है ना, डू वॉच इट. इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. इट विल मेक यू क्राई लाइक एनीथिंग. लेम जेम्स का मेरा आज का सवाल है, राजधानी जो ट्रेन है उसने अपनी बहन को चुप कराने के लिए क्या कहा, ये आपने मुझे बताना है. सो राजधानी ने अपनी बहन को चुप कराने के लिए क्या कहा, दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल मी. हिंट दे देती हूँ, दूसरा भी ट्रेन का ही नाम है, सोचो. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर. सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज तनीषा ऑलिव रिचार्ज पर जियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
1: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. कूल सॉन्ग.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: ऑल लिव लगा और हो जा रिचार्ज।
5: ऑलिव रिचार्ज,
1: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
5: ऑलिव रिचार्ज
6: इन एसोसिएशन विद
7: होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।
8: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल जूलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
9: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 million riyals ड्रीम बिगर।

0: तनिषा
1: तनिषा केके और शान की आवाज में 10 बहाने करके ले गए दिल। कमाल गाना, मजा आ जाता है इसको सुन के। अरे यार, ओरिजिनल तो ना ओरिजिनल ही होता है, ये तो सही बात है। तनिषा के साथ है आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर। ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और मैंने पूछा था जैम्स का सवाल, और सवाल ये है कि राजधानी ने अपनी बहन को चुप करने के लिए क्या बोला। एंड आई हैव गॉट अ फ्यू आंसर्स ओवर हियर, करेक्ट है कुछ गलत भी है, तो एक और चांस दे रही हूँ। राजधानी जो कि ट्रेन है इंडिया में जी, उसने अपनी बहन को चुप करने के लिए क्या बोला। जवाब भी दूसरी ट्रेन का नाम है। अब बताइए मुझे फटाफट से, काफी फेमस है। 3311063 पर मैसेज कीजिए, नहीं तो कॉल कर दीजिए 4444106 पर। सेंडिंग द लेयर मेहंदी साहब की आवाज में रंग दे बसंती से टाइटल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ऑलिव। जियो बिंदास मेरी जान।

शफकत अमानत अली खान साहब की आवाज में रावण मूवी से बहुत प्यारा गाना दिलदार ओनली ऑन रेडियो ऑल 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ ऑलिवी टॉक चल रहा है यहाँ पर और मेरा लेम जंस का आज का सवाल था कि अगर राजधानी जो ट्रेन है उसे अपनी बहन को चुप कराना होगा तो वो क्या बोलेगी। हिंट मैंने बता दी थी कि ये भी दूसरी ट्रेन का ही नाम है एंड आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर। यस दिनेश, राहुल और अजय, सफुवन एंड म्याओ नाम है इनका। जी ऑल दीज पीपल एंड अ लॉट मोर, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ओवर हियर। सब ने करेक्ट आंसर दिया है, कुछ एक दो ही गलत है एंड इट इज ओके, हो जाता है। एंड यस द करेक्ट आंसर इज शताब्दी। इफ आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो शताब्दी या वेल आप दीदी को ऐसे बोलोगे तो चमाट पड़ सकता है, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है यार, सो सब सही है, चलता है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माय लेमनेस मेरी जान। चलती हूँ अब, मैं मिलूंगी आपसे कल दोपहर 2 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 एफएम। जियो बिंदास मेरी जान।

Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: तुम जाओ क्योंकि अब मैं आ गई हूँ तो टेंशन सारी मेरे को ही चाहिए. बेटर
1: आपकी हैप्पीनेस की फ्री

मेरी क्यूटी पाई का दिन जो है वो आज के सारा आपका 3311063 पर आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस जो है वो भेज दीजिए। और लखनऊ मुंबई का मैच भी चल रहा है, उसकी अपडेट्स भी आपको देने वाली है। इन शॉर्ट 4 घंटे में भी अपने ही है, अपना हाल बताते रहो और जो भी कहना चाहते हो, जो भी मन में है, जो भी है मतलब शेयर कर सकते हो यार। 4 घंटे आपके लिए ही समर्पित है यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव और कहते रहो जियो बिंदास।

0: आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
3: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी।

0: वो हो हो जिन लोगों ने मुझे गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको थोड़ी देर में रिप्लाई करती हूँ। दीवानी आज मैंने ऐसे बात करी थी तनीषा से, मैं कहा यार ये प्रेम, मैं प्रेम की दीवानी हूँ ना, मुझे दोबारा से फिल्म देखनी है। तो उसने मुझे ऐसी जजी आईज से देखा, कहती व्हाई क्यों देखनी आपको, ये मन कर रहा है यार मेरा देखने का, कि भाई बड़ी फनी फिल्म है। मैच में क्या कहानी चल रही है मैं आपको बता देती हूँ। लखनऊ और मुंबई का मैच चल रहा है, लखनऊ अभी खेल रहा है, 4 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर होगा 51 एंड 1 विकेट जो है ऑलरेडी जा चुका है। कौन कौन लखनऊ को सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन मुंबई को सपोर्ट कर रहा है, देखो मैं यहाँ पे दोनों टीम को सपोर्ट कर रही हूँ। जो भी जीतेगा जो भी हारेगा कोई टेंशन नहीं है, गेम ऑन रहनी चाहिए, आपको स्कोर अपडेट मिलती रहनी चाहिए। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi, ab bilkul paas. Madar Kadeem, Vakra, VFS Global K side, Oak Banafi, Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai. Buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
4: Ab suniye, Olive ka zabardast hit. Zabardast hit.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
0: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
6: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट।

आपकी और हमारी जिंदगी में एक चीज चली आ रही है अब बिना इनवाइट किए। दोस्त वो है कदर की गर्मी यार, बड़ा दुख होता है। मैं ना ऐसे ही दिन में जब ऑफिस में बैठी रहती हूँ ना, तो मैं ऐसे टेम्परेचर चेक करते रहती हूँ बाहर का कि क्या हाल है। भाई 40 40 टच कर रहा है अब तो। भाई साहब 5:31 7 सेकंड स्टूडियो

के ख्यालों में कौन आ रहा है आजकल बताओ बेबी. मेरे ख्यालों में भूत आते हैं यार. मौसम मौसम की अपडेट कह रही है कि 36 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड स्टिल फील्स लाइक जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस है एंड हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है आज एंड लोएस्ट जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है. ह्यूमिडिटी 12% है एंड विंड जो है 11 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है. सो ये है मौसम के हाल. शायराना मौसम बनाने वाले हैं अभी हम इस गाने के साथ दावत इश्क फिल्म से. 5:32 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं. ये टाइम पे आप क्या कर रहे हो? ऑफिस निपट गया या फिर अभी थोड़ा सा बाकी है? क्या चल रहा है बताओ ना यार.

0: You are the only person who can play our voice on the radio and we can listen it and we can very much please you.
1: Simran ji, I love you so kilo.
0: You are very good and we never miss your show.
2: Your program is very good and you listen to it and you enjoy it. MashaAllah, so energy full voice. You listen to it and you enjoy it. Simran ji, I love you a
3: lot. Simran ji, I love you a lot.
4: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
5: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ.
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
8: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
9: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट.

मुझे बता सकते हैं ये जो गाना है साथ हम रहे ये कौन सी फिल्म से है? पर आप मुझे गूगल कर सकते हैं। और एक चीज जो है चाहे आप गूगल कर लीजिए बिल्कुल सही है, मेट गाला की अगर बात करें, मेट गाला में कुछ चीजें जो हैं वो आप खा नहीं सकते हैं और वहां के मेनू में आपको चीजें जो है वो मिलेंगी ही नहीं, लाइक गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे फूड जो कि मैसी होते हैं, जो कि स्टेन छोड़ देते हैं आपके कपड़ों के ऊपर, बहुत सारी चीजें हैं। इस आपकी ब्रीथ हाइजीन जो है वो सबसे बढ़िया मतलब ऊपर जो है वो लेवल की रहती है। सो यार ये तो मेट गाला की बात हुई, लेकिन हमारे ऑफिसेज में भी हमको ये चीज़ जो है वो ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे दुनिया की कह रही हूँ कि पूरे दिन का जो आधा जो टाइम है वो हमारे ऑफिस में जो है वो बीतता है। तो ऐसे टाइम पे कुछ लोग ब्रेकफास्ट जो है ऑलमोस्ट सब लोग फटाफट घर से निकलते हैं, ब्रेकफास्ट भी ऑफिस में करते हैं, लंच जो है ऑलमोस्ट सभी का ऑफिस में ही होता है। तो ऐसे टाइम पे कुछ लोगों की आदत होती है कि यार वो अनियन खाएंगे और हाई स्पाइसेस वाला जो है वो फूड खाएंगे, और कभी कभी क्या होता है कि वो फूड खाने सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है खाना खाने की, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक हाइजीन जो है वो मेंटेन करके जरूर रखनी चाहिए। कुछ लोग जब खाना के आते हैं तो वो महकते ही रहते हैं, सबको पता लग जाता है, अरे अरे अरे अरे ये खाना खाया, चिकन खाया, मटन खाया, ये खाया, अनियन खाया, है ना। सो मेक श्योर कि उसके बाद हम सब भी अपनी थोड़ा सा ऐसा हाइजीन का ध्यान रखें कि दूसरों को आपने क्या खाया है और दूसरे बता पाए, ये नहीं होना चाहिए। सिमरन कौर के साथ।

0: Bindas. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

हैप्पी एंडिंग से आप ये गाना सुन रहे हैं। लखनऊ और मुंबई का जो मैच चल रहा है, लखनऊ अभी खेल रहा है 11.5 ओवर कंप्लीट होने के बाद, स्कोर हो गया है 160 और 4 विकेट जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। विकेट ये है कि नहीं है अभी? नहीं, ये विकेट नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लेकिन मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि अभी प्रेयर का टाइम होने वाला है, तो वापस लौटती हूँ। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कॉल कहते रहिए जियो बिंदास।

0: रेडियो ऑनर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो Savings Commercial Bank. Save and win.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: हाय एवरीवन, मैं हूँ अरमान मलिक।
4: अरमान मलिक
3: 106.3 FM रेडियो ओलिव, जियो बिंदास।
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: रेडियो ओलिव नंबर वन।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
10: जॉय आलूकास्ट, वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर,
11: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस, वी

0: है जो हल्का हल्का सुरूर। फन्नी खान से आप ये गाना सुनने, सुनिधि चौहान दिव्य कुमार की आवाज। 6:18 स्टूडियो की घड़ी पे हम सब अपने अपने घरों से दूर रहते हैं और खाना जो है ना उसके लिए हमने अगर फॉर एग्जाम्पल बाहर से खाना ऑर्डर किया तो ज्यादा खाना ऑर्डर हो गया और खाना खाने के बाद वो रूम में पड़ा रहता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो वहीं से रूम से जो है वो उठा के वो फ्रिज में भी नहीं रखते हैं तो खाना वहीं पे पड़ा रहता है, उसके कुछ घंटे बाद या अगले दिन वही बिरयानी या खाना उठा के खाने लग जाते हैं। सो मेक श्योर, चाहे आप अब चैट जीपीटी भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल करना गूगल कर लो, कोई भी खाना अगर आपने बनाया कोई भी कोई भी खाना 2-3 घंटे के बाद वो खाना फ्रिज में जाना ही चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं इस चीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा हूँ यार, मतलब मैं नहीं इतनी देर तक खाना जो है वो वापस रख सकती और उसके बाद में खा सकती, नहीं 2-3 घंटे, क्योंकि बाहर से भी खाना जब बन के आ रहा है वो वहाँ पे भी टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें। अगर आप फ्रेश भी बना रहे हैं, अगर आपने 2 दिन के लिए फॉर एग्जाम्पल बना के रख लिया, क्योंकि हम सब जो हैं घर से दूर रहते हैं तो ज़्यादा आपको किचन में काम ना करना पड़े, तो आप 2 दिन का मील प्रेप अगर कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बनाया तो आप उसको आधा घंटा ठंडा करने के लिए रखिए, एकदम गर्मा गर्म मामला जो है फ्रिज में नहीं रखना, आधा घंटा उसको ठंडा कर लीजिए, उसके बाद आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के जो है वो रख दीजिए। क्योंकि भाई साहब अगर आपने अपने फेवरेट वाले राजमा चावल छोले चावल बनाए उसको खाने के बाद आप बीमार पड़ गए हॉस्पिटल जा रहे हो यार, कोई मतलब है उसका कुछ? तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गर्मी के टाइम भी हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है खुद की। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास, बाकी हाइड्रेट योर सेल्फ यार, पानी पीना बहुत ज़रूरी है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: Jet, the most awaited safari items for Qatar Riyal 10, 2030 is back on all safari outlets. Save big on categories like bakery, fresh food, groceries, household, electronics, cosmetics, toys, ready-made and IT, and everything else. Starting from May 4th, don't miss out. Visit your nearest safari hypermarket today and get a chance to win 30 best-tuned cars.
1: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening. Make you drive golden with
7: Joy Alukas, world's favorite jeweler.
8: Supported by Homes R Us. We come.

0: हाँ जी और मैसेजेस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सब के मैसेजेस के लिए।
1: जो मोहब्बत है ये उनका है काम।
0: मैं ये जी महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, मोहब्बत यही तो करवाती है यार। लेकिन कभी कभी जो है वो कुछ ऐसे फैंसी वर्ड्स का यूज भी करवाती है, जस्ट टू लुक कूल।
2: Gen Z
0: लिंगो में एक वर्ड जो यूज किया जाता है शूक, जब होता है ना हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, तो उसके लिए Gen Z जो है वो लिंगो में एक वर्ड है शूक, जिसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं। लाइक आई एम शूक, लाइक आई एम सरप्राइज। 6:31, 10 सेकंड सीढ़ी की घड़ी पे हो चुके हैं, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं सिखा सकती मैं आपको। और कोई ज्यादा आपको सिखाए आपको मजा भी नहीं आता लाइफ में, राइट, क्योंकि जिंदगी आपको अपने आप सिखा रही है। ओ माय गॉड, ये तो रियलिटी चेक हो गया दोस्त, वो अगले घंटे होगा।

0: you are the only person who can play our voice on the radio and we can listen it and we can very much please us.
1: Simran ji, I love you so kilo.
0: You are very good and we never miss your show.
2: आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और सुनने में मजा आता है. माशाल्लाह सो एनर्जी फुल वॉइस है, सुन के टेंशन दूर हो जाती है, मजा आता है.
3: सिमरन जी आई लव यू अ लॉट. सिमरन के
4: साथ फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, prawns crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alcor.
5: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
9: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
10: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कम

0: नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

लखनऊ और मुंबई का मैच चल रहा है। लखनऊ ने अपनी पारी खेल ली है और पहले खेलते हुए उन्होंने 229 रन का टारगेट रखा है। अब मजा आने वाला है, जब बड़ा टारगेट रखते हैं ना तब मजा आता है यार। सामने वाली टीम जो है जब चेस करे, मैं आपको सारी की सारी स्कोर

योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
2: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
3: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट

बस किसी की शादी में नाचने का मन हो गया यार। फिर सोच रही हूँ मैं अपने मनोरंजन के लिए किसी की शादी क्यों करवाऊँ। की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ।

माहौल जो है वो सेट है, एनर्जी एकदम हाई है, तो इस हाई एनर्जी में आप जो है वो थोड़ा सा एडवेंचर कर लीजिए। डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड जो है वो आपके लिए आ चुका है, आउटडोर थीम पार्क जो कि 900 पार्क में है, जहां पर आपको राइड्स होंगी, मिलेंगी, लाइव शोज हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, मैस्कॉट्स हैं, बहुत सारी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हैं, खाना पीना है, फुल ऑन जो ऐसा बाहर जाके आप मनोरंजन ढूंढते हैं ना, वो सारा मनोरंजन आपको यहीं पर मिलेगा, एडवेंचर भी मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 9th of May तक है। मेक श्योर की इसकी टिकट जो है जो कि आपको स्नूनू SCT पे मिल जाएंगी, आप ऑनलाइन जो है वो कर लीजिए। एंड इसकी टाइमिंग एक बार चेक करके जाइएगा जब भी आप जा रहे हैं, क्योंकि वीकडेज की टाइमिंग संडे टू वेंसडे जो है वो शाम 4 से लेकर रात के 10 बजे तक है, और वीकेंड्स पे थर्सडे टू सैटरडे शाम 4 से लेकर रात के 11 बजे तक है। बट अगर आपको बिना टिकट के पैसे खर्च किए जाना है, सो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाइएगा, हम एक कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं जहां पर आप सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके फ्री टिकट जीत सकते हैं। यार सिमरन कौर आपके साथ, वेलकम।

0: आते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट।

0: ख्वाब है यार।
1: तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही।
0: कितना प्यारा गाना है यार ये। चलो अब मैं आपको बता दी हूँ वायरल में क्या देख रही हूँ आजकल मैं।
2: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: वायरल में गंजी चुड़ैल तो मेरी फीड पे रहती है। पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जो गंजी चुड़ैल के वीडियोस जो है वो देखते हैं। भाई सब बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार आप देखने लग जाओ। प्रॉपर उन्होंने स्टोरी बनाई होती है, उन्हें गंजी चुड़ैल की साड़ी का रंग हमेशा ग्रीन रहता है, वो खुद भी बिल्कुल ग्रीन दिखती है, ग्रीन फ्लैग दिखती है, लेकिन काम रेड फ्लैग वाले करती है। सो यार मेरी फीड जो है वो बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि कभी कभी मैं खुद देखती हूँ कि भाई मैं ये क्या देख रही हूँ। खाना तो खाने की फीड तो मेरी है ही है, लेकिन जो वायरल वीडियोस हैं गंजी चुड़ैल के वो मैं जरूर देखी। अगर आप नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। बट बाय द वे आपकी फीड पे कौन से वायरल वीडियोस जो है वो आते हैं जो कि आप देखते हो और कभी कभी आपको अपनी ही चॉइस पे ऐसे लगता है ये मेरा ही इंस्टाग्राम है क्या, ये मेरा ही सोशल मीडिया है कि ये मैं क्या देख रहा हूं या मैं देख रही हूं। मेरे को हर बार ऐसे थॉट्स आते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए आपकी फीड क्या कहती है, क्या वायरल है आपकी फीड पे। 3311063 सिमरन कौर है आपके साथ में। क्या चाहिए
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: इतना छोटा सा तो ख्वाब है यार। है ना, वो कभी छोटे बड़े नहीं होते, ख्वाब ख्वाब होता है। कोई अगर आपको ये बोले कि अगर आपने कोई अपना ख्वाब बताया, किसी के बारे में बताया, तो आप बोलेंगे अरे यार ये तो क्या ही है। नहीं यार, ऊपर वाला चाहे तो क्या नहीं हो सकता, आपको बस अपने लिए चाहना है, और छोटा बड़ा वो अपने आप देख लेगा कि वो आपके लिए फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आपकी जिंदगी में। वो ऐसी चीजें ऊपर वाला जो है वो आपको देता जो कि आपने सोची भी नहीं होती है। इतनी मोटिवेशन काफी है, बाकी मैं रियलिटी चेक में दे दूंगी। लखनऊ और मुंबई का मैच जो है वो चल रहा है। लखनऊ ने पहले खेलते हुए 229 रन का टारगेट दिया है, मुंबई अभी खेल रही है और 5.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद उनका स्कोर हो गया है 54 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 88 बॉल्स पे टेक्निकली उनको 175 रन जो है वो बनाने हैं। तो सारी अपडेट आपको देती रहूंगी, लेकिन रात का मौसम है, चांद भी है, तो फिर
1: चांदनी रात है, तू मेरे साथ है।
0: और मैं आपके साथ होती हूँ बस थोड़ी देर में।
2: T20 score update
3: presented by Brooks Cafe, sweetness that hits straight to the heart. Dadda ki most loved kulfi ab bilkul pass. Madar Kadim Bakra VFS Global K site, Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
4: Powered by Ahmed Al Maghribi perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna, Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
5: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Simran Didi, I love you so much.
2: You are the only person who can play our voice on the radio and we can listen it and we can very much please you.
3: Simran ji, I love you so kilo.
2: You are very good and we never miss your show.
4: आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और सुनने में मजा आता है. माशाल्लाह, सो एनर्जी फुल वॉइस है, सुन के टेंशन दूर हो जाती है, मजा आता है.
1: Simran ji, I love you a lot. Simran ke saath.
5: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
6: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
5: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
6: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
5: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
8: साथ. जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
9: जॉय आलूकास्ट, वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर,
10: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस, वी कम्प्लीट.

0: वणकम, मैं हूं जैकी श्रॉफ।
1: रेडियो 106.3
0: जे ओबिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: और मेरे लिए प्यार वो है जो आप लोग मुझे मैसेजेस में लपेट के भेजते हो यार, थैंक यू सो मच।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: मेगा जी, बात ये है कि हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं आसपास जो कि हमको पसंद नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो आपको उन लोगों से प्रॉब्लम भी है लेकिन आपको रहना भी उन लोगों के साथ ही है, मतलब उनके साथ हैंग आउट भी करना है। बहुत बार जो है बहुत सारे लोग जो है वो फेक करते रहते हैं कि हाँ अगर उनको कोई इंसान नहीं पसंद है तो फिर भी उन्हीं के साथ जो है वो हैंग आउट कर सकते हैं। सो मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं बोल दी, इससे पहले मेरा कुछ ऐसा था कि ठीक है यार कोई बात नहीं है, कोई अगर बुरा है जिसके सामने आपको मतलब आप नहीं हो पा रहे हो, है ना, उस सामने वाले का नखरे ही झेलने में लगे हो, पहले मैं ऐसी थी, लेकिन अभी क्या है कि कभी कभी आप लोगों की बस हो जाती है। सो आपको मुझे लगता है कि जितनी जल्दी आपको ये समझ आए कि जिन लोगों के सामने जिस सर्कल के सामने जो है वो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको आप फील नहीं हो रहे हो, तो आपको उससे जो है वो हट जाना जो है वो चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मतलब यू कांट चेंज द पीपल अराउंड यू बट यू कैन चेंज द पीपल अराउंड यू, समझने की इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। सो बहुत ईजी सी बात है, जब आपको लगे कि नहीं हो रहा यार निकल लो यार, इट्स योर लाइफ, क्यों बर्दाश्त करना है किसी को, आपका पीस ऑफ माइंड सबसे ऊपर आता है दोस्त।

रेडियो ऑन योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Geo Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Salaam, pranam, namaskar, vanakkam. I am Jackie Shroff, Radio Olive. Bolo Bindas.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
8: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट

सोनू निगम यार कमाल करते हैं, बवाल करते हैं जब भी गाते हैं। और ये दूसरी विकेट गई। आपको मैच का हाल ही बताने वाली थी। दूसरी विकेट जो है वो मेरी आंखों के सामने जो है वो अब भी गई है। और मुंबई जो है वो आज खेल रही है लखनऊ के साथ। लखनऊ ने पहले खेलते हुए 229 रन का टारगेट जो है वो दिया है। एंड अभी के लिए 36 बॉलों पे 52 रन जो है वो मुंबई को जीतने के लिए चाहिए। 2 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं। सो या मैच के हैं ये हाल। मतलब यार मैच एक ऐसी चीज़ है ना कि ये जो क्रिकेट यू नो है इतना मेरे को नहीं समझता है, बट इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब एक सारी गेम जो है वो विकेट के जाने से और सारी गेम जो है वो चौके छक्के लगने से जो है वो पलट जाती है, राइट। सो गेम पलट गई है और अभी रोहित शर्मा जो है वो आउट हो चुके हैं। सो 44 बॉलों पे आई एस उन्होंने 84 रन जो हैं वो बनाए हैं, जो कि बहुत ही कमाल के हैं। और आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो प्लीज़ मुझे बताइएगा 3311063 पर। वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम रेडियो पे बोलूं तो आप अपना नाम मुझे टाइप करके व्हाट्सएप करिएगा।

0: You are the only person who can play our voice on the radio and we can listen it and we can very much please you.
1: Simran ji, I love you so kilo.
0: You are very good and we never miss your show.
2: आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और सुनने में मजा आता है. माशाल्लाह सो एनर्जी फुल वॉइस है, सुन के टेंशन दूर हो जाती है, मजा आता है.
3: सिमरन जी आई लव यू अ लॉट. सिमरन के
4: साथ फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, prawns crafted with patience, served with pride. Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: जॉय आलूकास्ट, वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर.
8: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कम

खूबसूरत आवाज शान की। मैं ये सोनियों की दादी की हालचाल सत श्री अकाल।

अब आप एक काम करिए, अपना नाम मुझे बता दीजिए, बस लिख के भेज दीजिए। दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी कभी रेडियो पे बोलूं, तो आपको मुझे अभी कभी अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 3311063। जी हाँ, 3311063। इस पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम जो है वो लिख के भेजिए। चलिए, शरण, साकिब, हेम, अंजू, सदीक जी, सोना, इरफान जी, इकबाल जी, अब्रार जी, प्रकाश, राहुल, दिनेश, अराफत जी, डेजी जी, थैंक यू सो मच, पाली जी, थैंक यू सो मच, मोहम्मद आबिद जी, थैंक यू सो मच, शिव जी, थैंक यू सो मच, सुमी, थैंक यू सो मच, जय, थैंक यू सो मच, जैम, थैंक यू सो मच, फातिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, यूसुफ जी, थैंक यू सो मच, वकील जी, थैंक यू सो मच, गैरी, थैंक यू सो मच, खिजर, हयात जी, थैंक यू सो मच, शिवा जी, थैंक यू सो मच, गणेश जी, थैंक यू सो मच, सुनील जी, थैंक यू सो मच, सुमी, थैंक यू सो मच, आकिब जी, थैंक यू सो मच, आबिद मुन्ना जी, थैंक यू सो मच, शिवा जी, थैंक यू सो मच, संजय जी, थैंक यू सो मच, दीदा जी, थैंक यू सो मच, तीरथ प्रसाद जी, थैंक यू सो मच, अरबाज खान जी, थैंक यू सो मच, आनंद जी, दिनेश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शिवाजी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सैफुल्ला जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के भेजिए। दानिश जी, थैंक यू सो मच, महावीर जी, थैंक यू सो मच, आनंद जी, थैंक यू सो मच, अरबाज खान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। 3311063 व्हाट्सएप करिए अपना नाम। अगला गाना शुरू होने वाला, शिवा ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है वो ले चुकी हूँ। संजय बाली जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। जुनैद जी, थैंक यू सो मच, नरेन जी, थैंक यू सो मच, राजीव मोदी जी, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर आवर। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, अब आप थैंक यू लिख सकते हैं और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी जरूर भेजिएगा, जो कि आपका ऑल टाइम फेवरेट है, आप बहुत यूज करते हो अपने व्हाट्सएप पे।

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Geo Windows. Tough kaam aur bhi aasan. Carmel Group laya hai Shantui ke wheel loaders, excavators aur bulldozers. Mazbooti aisi jo har challenge jeet le. Visit Carmel Group now.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening make you drive golden with
4: Joy Alukas, world's favorite jeweler.
5: Supported by Homes R Us. We complete.

मैं चाहूँ तो इससे ज्यादा और भी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मेरा टाइम मुझे अलाउ नहीं कर रहा यार। मुलाकात अब आपको छोड़े जा रही हूँ मिडनाइट लाउंज के लिए, सो हाइड्रेट योरसेल्फ एंड ओवरथिंकिंग मत करना, खाने पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे देव डेवली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

अच्छा बचपन में ना क्या होता था कि हमारे पास टीवी का रिमोट होता था, बड़ी लड़ाई होती थी कि कार्टून का माहौल रहना चाहिए या फिर हैपनिंग सा माहौल, गानों से चलना चाहिए या फिर वो तूतू मेमा वाला लगाओ यार। लेकिन चॉइस अपनी थी, अब बड़े होते गए और चॉइस अपनी जगह दुनिया की हो गई। इमोशंस अपने हैं लेकिन कंट्रोल दुनिया कर रही है कि नहीं। Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज और Midnight Lounge में वेलकम टू यू। Radio Olive सुन रहे हैं आपकी happiness frequency, तो दिन भर में जितनी भी sadness है ना सबको छूमंतर कर दूंगा। और बताए सारा इलाज क्या होता है, मजाक नहीं कर रहा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जब आप गाने सुनते हैं ना तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली, बस आपको उस गाने को फील करना, और फील करने के लिए ना उस गाने को साथ में गुनगुनाना होता है, गुनगुनाने के लिए वॉल्यूम को थोड़ा अप करना होता है। चुचुचुचुसी आवाजें ना दुनिया तक नहीं पहुंच पाती, दुनिया को दिखाओ मुझे इफेक्ट नहीं होती है तुम्हारी दीवी दुख दर्द पीड़ाएं। हाँ, लेकिन अपनी खुशी को मेरे साथ सेलिब्रेट करो। इंस्टा पे जाओ, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और शेयर करो अपने कोई भी दिल की बात, ताकि अगर दिल भारी है तो उसको हल्का कर दिया जाएगा और इस माहौल को सुकून भरा कर दिया जाएगा। जियो बिंदास।

0: अच्छा, इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे लोग मिलते हैं और हर दूसरे का ट्राई होता है कि उसके किसी तरह इनबॉक्स में पहुंचना है, और इनबॉक्स में पहुंचने के बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती है बेटा जी। हाँ, मतलब पहली उंगली पकड़ो, फिर पूरा हाथ पकड़ो, फिर सर पे बैठ जाते हैं, फिर आपके व्हाट्सएप पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि नहीं।
1: रियल कहानी।
0: Hey, this is me, आरजी आकाश, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में। आपको पता है इतना बड़ा डेटाबेस है इस चीज का कि कितने सारे लोग व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं, कैसे इंस्टा या फेसबुक के थ्रू। कई बार तो इंस्टा के कमेंट्स पढ़ के, उनको रिप्लाई करके, वहां से बातचीत शुरू करके, मतलब आदमी अपने हमसफर की तलाश में, खास इंसान की और या फिर खास दोस्त की तलाश में कहां कहां से लोगों को नहीं खोजता। लेकिन इस चीज से एक चीज तो मिलती है यार सोचने को, मतलब देखो जैसे हम प्यार को खोज रहे हैं ना, तो दोस्ती के लिए जब हम किसी को देखते हैं ना तो खोजना नहीं पड़ता। अक्सर किसी का कमेंट पसंद आया था, अचानक से बातचीत चालू होती है, वाइब्स मैच कर जाती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज को खोजते हो ना, वो नहीं मिलती। जब आप सोचते हो ना कि मुझे उसके व्हाट्सएप तक पहुंचना है, तो शायद ऐसे बात नहीं बन पाएगी। आपको पहले उससे बस एक अच्छी दोस्ती करनी है, और उसके लिए ना अपनी वाइब्स जैसी है वैसी रखो। अगर सामने वाला लिटरली आपके टाइप का होगा ना, तो वो लॉन्ग रिलेशन चलेगा। और अगर सिर्फ ये टास्क है कि सिर्फ उसको जीतना है, वो जीतना कैसा है जहाँ पे सिर्फ कुछ दिन के लिए जीतना है यार, जो चीज़ अपनी है ही नहीं उसको पाना कैसा है ना, और जो अपना है ही नहीं उसे खोना कैसा। तो इसलिए अपनी चीज़ को और अपना बनाने के लिए पहले अपनी वाइब्स को अपने पास रखो, और उसकी वाइब्स में उसके साथ घुल जाओ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपना नेचर चेंज कर दो। फिलहाल तो आपकी वाइब्स मेरे साथ बिल्कुल मैच करती हैं इन गानों के साथ, तो साथ में कहते हैं भाई चियो बिंदास।

0: थे। बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: बस चल रहा है भाई।
0: व्हाट अबाउट यू?
2: हाँ चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?

0: का कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय
2: देखो, हर कोई चाहता है कि उसके सपनों का वो राजकुमार या वो रानी आए ना, तो सामने से वो एक अलग सी हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाएं, उसकी लटे उसकी जुल्फे होए होए होए होए, और वो लड़का घोड़े पे सवार होके आ जाए, यही सबके प्लानिंग्स होती ना। लेकिन होता क्या है, जब शादी में अपनी खुद ही लड़की डांस कर रही होती है और लड़का अलग सा डांस करके आ रहा होता है, कई बार बड़ी वियर्ड सिचुएशन हो जाती है यार। कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना इन लोगों में।

Hey, this is me, RJ Akash, Midnight Lounge में, और चलिए लेकर चलते हैं आपको फिल्मी फ्लैशबैक में। देखो, पहले ना नजाकत थी, पहले सब कुछ एक बहुत नजाकत के साथ, बड़े इमोशंस के साथ, अलग ही एक्सप्रेशन, वो शर्मीले एक्सप्रेशंस। सोचिए, एक ब्राइड होती है जो बहुत शर्मीली सी होती है, अब वही ब्राइड धुमधड़ाक करना स्टार्ट कर दे, कितना वियर्ड सा हो जाता है। ऑल्दो आई एम नॉट जजिंग, ठीक है, सबका अपना एक दिन होता है, स्पेशल डे होता है, लेकिन वो नजाकत खत्म हो जाती है यार। लेकिन स्टिल लड़के की हमेशा एक ही डिमांड रहती थी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। हाय, वैसे इस गाने से आज मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आज के फिल्मी फ्लैशबैक में इस गाने पर लेके चलते हैं। इस गाने कुछ नॉस्टैल्जिया बातें भी करेंगे, लेकिन पहले आपसे जान लें ये गाना कौन सी आइकॉनिक फिल्म का है। तो जल्दी से इंस्टा पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, जो सबसे पहले 10 सेकंड्स के अंदर आंसर कर देगा। स्टार्ट हो गया जी टाइम, हाँ। तो सबसे पहले जो आंसर करेगा उसके नाम के साथ उसका फेवरेट गाना डेडिकेट मैं करूंगा। तो गाने का नाम लिख दीजिएगा, कौन सा सुनना चाहते हैं, और अभी फिलहाल जी जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज,
0: ये है मिडनाइट लाउंज।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

देखो यार वक्त तो बदला है, बिल्कुल बदला है। हालांकि पहले 18 साल के लड़के 19 साल के लड़के कहा करते थे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और 24-25 साल तक में उनकी रानी आओ कि वो सेट हो जाते थे। आजकल के लड़के 30 साल के होने को हो रहे हैं, 31 साल के होने को हो रहे हैं, रानी छोड़ो उनका बाजा ही नहीं बज रहा है। नहीं मतलब अभी तक घोड़ी पे नहीं चढ़े यार, अभी तक शादी पाती नहीं हुई है उनकी। लेकिन हाँ, जो स्कूल स्टूडेंट्स जो ये बैचलर्स देख रहे हैं ना 18 से भी कम के, यार इनको कोई देख कर कह सकता है? आप भी मानते हो इस बात को जो ये 18 साल से कम के बच्चे हैं, और खासकर 18 के भी हैं, इवन 2000 के बाद के जो बॉर्न बच्चे हैं, ये हमसे ज्यादा जल्दी बड़े नहीं हो रहे क्या?

0: यार आज के फिल्मी फ्लैशबैक में जाने से पहले मैंने सोचा कि यार आपसे ये सवाल पूछ लूं। आपको नहीं लगता यार 2000 सन के बच्चे जो हो रहे हैं पैदा, 2000 के बाद के जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सारे बहुत जल्दी बड़ी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। उनको तो अपना आधार कार्ड तक लगाना पड़ रहा है यार, उनको अपना आइडेंटिटी प्रूफ लगाना पड़ रहा है, या फिर जहां से भी वो बिलोंग करते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम एनीवेयर। ये 2000 के बाद के जो बच्चे हो रहे हैं ये कुछ ज्यादा जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, और ये बहुत जल्दी उम्र में कह भी रहे इसलिए मैच्योर हो के मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो वैसे किसी के सपनों की रानी तो आ ही गई थी, बहुत वक्त पे आई थी, जिन्होंने आते ही उनको सुपरस्टार बना दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इनका आंसर मेरे पास आ गया है। ये आइकॉनिक सॉन्ग फिल्म आराधना 1969 का है ये गाना, और इसका एक अमेजिंग फैक्ट मैं बताता हूँ आपको। इस गाने के बाद ही राजेश खन्ना को इंडिया का फर्स्ट सुपरस्टार कहना लगी थी जनता। जीप पर बैठ कर गिटार बजाते हुए राजेश खन्ना जी और सामने ट्रेन में शर्मिला टैगोर, ये सीन इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग इसे बॉलीवुड का मोस्ट रोमांटिक चेस सीन मानते हैं। ये सिर्फ गाना नहीं था जनाब, ये एक एरा था, और इस एरा की शुरुआत की थी राजेश खन्ना जी ने। वैसे खन्ना साहब को तो उनकी महिला जी मिल गई, उनकी वो रानी मिल गई। आपका क्या जनाब सवाल है, आपकी शादी होने वाली है, और अगर आपके भी नोन में कोई ऐसा है जो 2000 से ऊपर गए तो यार उसको जरा टैग करो कमेंट में, इंस्टा पे जाओ, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश। आपका क्या मानना है इस बात पे, 2000 सन के बच्चे सच में ज्यादा जल्दी बड़े हुए हैं कि नहीं हो रहे, कौन सा मतलब इन लोगों को कौन सा ऐसा बूस्टर दिया जा रहा है?
1: चलिए फिलहाल तो बूस्ट आपको मैं कर देता हूँ बढ़िया से गाने के साथ। तो चलिए करते हैं बूस्टिंग पावर मोड ऑन विद रेडियो ऑलिव, और कहते हैं साथ में जियो बिंदास फुल ऑन।

0: तुम्हें नहीं लगता कि कई बार हम कुछ चीजें इतनी ज्यादा सोशल कर देते हैं कि अपनी लाइफ में ना अपनी फीलिंग्स भी हर किसी के साथ इतना शेयर करने बैठ जाते हैं और लोग उस फीलिंग्स की धज्जियां उड़ा देते हैं।
1: डिजिटल डायरी।
0: Hey, this is me, RJ Akash, Midnight Lounge में, और आज की डिजिटल डायरी के पन्ने में लिखा है कि फीलिंग्स आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप कभी आपने देखा है किसी सेलेब को कि अपने घर में जब मर्जी कोई भी ऐसी न्यूज चैनल, कोई भी ऐसे पॉडकास्ट वाले, कोई भी ऐसे मीडिया कवरेज वाले आ रहे हैं और आराम से उनके घर में बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ बाहर वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर उनको कितनी कैमरामैन घेर ले, दूर से उनको कैच कर ले, दे कांट स्टॉप बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्लेस। बट व्हेन इट्स अबाउट योर प्राइवेट थिंग, इट्स अबाउट योर प्राइवेट हैप्पीनेस, प्राइवेट फीलिंग्स, ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यू कांट पोस्ट एनीवेयर। अदरवाइज ऑब्वियसली बात है, खुले घर में तो क्या ही होता है, चोरियां हो जाती हैं, है ना, लोग फिर ताक झाक कर सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक उसी तरह से मेरा मानना है कि व्हेन इट्स अबाउट योर हैप्पीनेस, व्हेन इट्स अबाउट योर फ्यूचर, व्हेन इट्स अबाउट योर ड्रीम्स, डोंट डिस्क्लोज दैट। कहते हैं ना वैसे भी शोर मचाएंगी ये तालियां, शोर मचाएंगी आपकी सक्सेस। तो कोई भी चीज़ है, इवन अबाउट योर रिलेशनशिप, डोंट टेल एनी वन, जस्ट टेल टू योर पेरेंट्स कि ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद हाँ परिवार वाले खत्म ही कर देंगे, बात अलग है। लेकिन देखो कोई भी चीज़ अपनी लाइफ की ना हर चीज़ पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हर चीज़ इंस्टाग्राम पे या स्टेटस पे लगा के हमें लोगों की शाबाशी या दिल लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। ज़रूरत होती है तो उस चीज़ को थैंकफुल होने की और उसको प्राइवेट रखने की, है ना। जी ओपन दास।

देखो कहते हैं कि स्क्रीन पर हंसने वाले चेहरे अक्सर बैकस्टेज रोया करते हैं, मायूस हुआ करते हैं, लेकिन क्या करें, वो रो नहीं सकते ना, ऑन स्क्रीन अपने आप को दिखा नहीं सकते। उनके चाहने वालों को वो और ज्यादा मोटिवेट करना है, उनको डीमोटिवेट कर नहीं सकते, क्योंकि उनके आंसू देखकर सोचिए जिनसे आप इंस्पायर होते हैं और आपको पता लगे कि वो भी कहीं ना कहीं किसी कोने में जाकर रोते हैं, तो शायद आपको लगेगा यार इस दुनिया में हर कोई तो हार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर कोई जीत रहा है उस आंसू को पोंछ के। आप ही लोग वो उनकी इंस्पिरेशन बनते हो और वो आपकी ये सर्कल है। जी हाँ, आज एक रात एक कहानी में, एक ऐसी कहानी, कभी स्क्रीन पर उनकी मुस्कान थी, कभी आंखों में एक शांति सी चमक, पर एक दिन जिंदगी ने उनसे रोल नहीं हिम्मत का ऑडिशन लिया। सोनाली बेंद्र, जिन्होंने ग्लैमर के शीशे के पीछे स्ट्रेंथ का सच दिखाया, कैंसर जैसे लव्स के सामने भी वो टूट कर नहीं बिखरी, बाल गिरे पर सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं, कैमरा बंद हुआ पर कॉन्फिडेंस कभी नहीं। उन्होंने दर्द को ड्रामा नहीं बनाया जनाब, बल्कि एक्सेप्टेंस को पावर बना लिया, और जब वो वापस आई तो सिर्फ सर्वाइवर नहीं, रोल मॉडल बनकर आई। एक रात एक कहानी जो हमें याद दिलाती है जनाब कि खूबसूरती फेस पर ही नहीं होती है, हिम्मत और खूबसूरती दिल से होती है। जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: अच्छा मेरी लाइफ का ना एक असूल है, कुछ चीजें अगर खो जा रही है मैं उसे खोने देता हूँ। अब आप कह रहे हो उसे खोने के बाद भाई ये तो गलत बात है ना। नहीं नहीं, मैंने कहा कुछ चीजें, और वो चीजें जो शायद अपनी थी ही नहीं।
1: You should know before you sleep.
0: Hey, this is me, RJ Akash, Midnight Lounge में। और जरूरी है ये जानना जनाब सोने से पहले कि कुछ चीजें खो जानी बेहतर है। देखो किसी और की चीज जो हमारे पास है, अब वो चाहे किसी और का दिल हो, क्योंकि जो अपना दिल है, अब जैसे आपका दिल है वो आपका थोड़ी सिर्फ, वो मेरा भी है, मैं उसे मानता हूँ अपना। तो जैसे अगर किसी को हम प्यार करते हैं और अगर वो इंसान अपना है तो फिर उसका वो दिल अलग हो ही नहीं सकता, फिर तो एक दिल दो जान हो सकती है बस। तो इसलिए अगर कोई चीज़ खो रही है तो उसे खोने दो, क्योंकि वो अपनी थी ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ जो अपना है ही नहीं उसे खोना कैसा, जो अपना है ही नहीं उसके लिए रोना कैसा। नहीं तो चिल मारो, रिलैक्स करो और बिंदास जियो, ताकि लाइफ की हर एक धुन यार बहुत एंजॉयिंग लगेंगे। ट्रस्ट मी, ये बहुत सुंदर लाइफ है, बहुत सुंदर। जब खिड़की के बाहर देख पाते हो, सोचो वो लोग जो देख भी नहीं पाते, सोचो वो लोग जो सिर्फ एक ही रंग से जी रहे हैं पूरी दुनिया, सिर्फ काला रंग। लेकिन आप हैं इस दुनिया के हर एक ब्राइट कलर को देख पा रहे हैं, इस दुनिया की हर एक सुंदर चीज को देखकर वाओ कर पा रहे हैं, है ना, चाहे वो इंसान की बनाई हो या कुदरत की। सो ऑलवेज थैंकफुल, ऑलवेज फील ब्लेस्ड, एंड साथ में गाओ जियो बिंदास।

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.
1: Yeah, Midnight Lounge.
2: Yeah, Midnight Lounge.
3: This hour is brought to you by
4: Homes Are Us. We complete your home.
5: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

अच्छा, हम लोग ना एक लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे आ ही जाते हैं कभी ना कभी जब हम लोग फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हेई दिस इज मी आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में। और देखो, एक टाइम आता है जब आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस फर्क ना पड़ने तक के लिए ना ये जो सफर होता है वो इतना भयानक होता है कि इतना फर्क पड़ चुका होता है कि फिर फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है जना, जब आप गलती से भी मैसेज करना भूल जाए, जब आप गलती से भी ट्यून इन करना भूल जाए टाइम पे। तो ट्यून इन करना बिल्कुल नहीं भूलना है यार, मेरी सांसें अटक जा रही है। चलिए फिलहाल अभी के लिए विदा लेता हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी, गुड बाय करने के बाद भी इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। आशिकों को तो जगह ही चाहिए होती है, रास्ते खुद ब खुद बना ही लेते हैं हम लोग। तो चलिए सुरंग खोद के मैं जल्दी से आ रहा हूँ, ऑफिस से स्टूडियो से फ्री होते ही अब फटाफट इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आ रहा हूँ, ढंग से वाला जो प्रॉपर चैट करेंगे। तो इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और अपने दिल की कोई भी बात बेधड़क मुझसे शेयर करो। याद रखो कि मन में भर कर नहीं जीना है, मन भर के जीना है, और उसके लिए जितनी भी दिल की बातें हैं ना वो बस मेरे साथ बेधड़क शेयर कर दो, कहीं इधर की उधर नहीं होने वाली। पक्का सुरंग है मेरी अच्छे वाली, जिसके अंदर कोई भी बात इकट्ठी हो जाती है बस वो कहीं नहीं जाती, फिर मैं आपको उसको सॉल्यूशन ही देता हूँ अपने खजाने में से। चलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से ट्रैक्स लगा के जा रहा हूँ, ताकि जो आपका सफ़र है चाहे ज़िंदगी का हो या गाड़ी का, इसी तरह से खूबसूरत और बेशुमार बहुत प्यारा सा रहे। जियो बिंदास, गुड नाइट।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
2: 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
3: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी

Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: are listening to. You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: चांदनी रातें, चांदनी रातें.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.
3: जबरदस्त है.